0: इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं
1: माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रय तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी योधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 101.7 मेगाहर्ट्ज वर आकाशवाणीचं हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। श्रोतेहो 6:05 आणि 14 सेकंद झाली आहेत। अमृतधारा या कार्यक्रमात योग याविषयी सोमनाथ वाघमारे यांनी लिहिलेले विचार ऐकूया। वाचन स्वर आहे वैजय।

कोलकाता पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां से आप 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे

0: हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
1: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
3: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी have arrived at the iconic Red Road, and the Honorable Prime Minister will be leading the nation today, and he will personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging, and we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
1: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए। यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है।
3: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष।
1: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ।
4: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का

0: जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
1: माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने अभी सभी का यहां पर स्वागत किया और साथ ही आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की है उनके बारे में बताया। हम आपको बताएं कि माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री आरएन रवि, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री जी स्वयं आज के दिन के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए परिधान में इस समय है। योग को परिलक्षित करती हुई टी शर्ट्स हैं और साथ ही पतलून पहनी है और जो भी योगाभ्यर्थी यहां पर बैठे हैं, योग साधक यहां पर बैठे हैं रंग बिरंगे मैट्स पर, वो बेहद उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उल्लास है लेकिन साथ ही अनुशासन भी है।
2: यस एंड एवरी एंथुजियास्ट हियर एंड नाउ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी।
3: वंदे समवेत सुनागरिक भद्रमंडली, আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এবং যার হাত ধরে সিটি অব জয় এই কল্লোলনী তিলোত্তমা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে যোগ কামস টু হোম, যোগ বঙ্গে ফিরে এলো, সেই মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজিকে 11 কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হৃদয় থেকে স্বাগত, অভিনন্দন, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম নিবেদন করছি। মহামহিম রাজ্যপাল মাননীয় আর এন রবিজি রয়েছেন, ভারত সরকারের মাননীয় স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতাপ রাও যাদবজি রয়েছেন এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, মিডিয়ার বন্ধুরা এবং যোগপ্রেমী জনগণ রয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটু পরেই একটি সুবিশাল বৃহৎ ঐতিহাসিক কার্যক্রম হতে চলেছে। ইতিমধ্যে এই কার্যক্রমের আজকে যে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এতদিন এর সঙ্গে রাজ্য সরকার বা সরকারি উদ্যোগ যুক্ত ছিল না, কারণ আমাদের অজানা, আমি সে কথা বলতেও চাই না এই সুপ্রভাতে। কিন্তু আমরা মনে করি পশ্চিমবাংলার জনতা জনার্দন তারা যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যার ফলশ্রুতিতে এবারে বন্দে যোগ, যোগ পূজা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রায় 257,000 রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান এই যোগে পার্টিসিপেট করছে। আমার বিশ্বাস আজকে পশ্চিমবঙ্গে গোটা রাজ্যে দার্জিলিং থেকে দীঘা, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, কোটিরও বেশি মানুষ এই যোগ উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন। আর কলকাতা বিগত দিনের সব রেকর্ড ভেঙে লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগে অংশগ্রহণ করবেন। আমি কথা বাড়াবো না, শুধু একটা কথাই বলবো, 1893 সালে বিশ্ববন্দিত যুব সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ তিনি এই যোগের সম্পর্কে কি বলেছিলেন আপনারা জানেন, যোগই একমাত্র মুক্তির উপায়, যোগই আনন্দ, যোগই প্রেম, এবং যোগের মধ্য দিয়ে মন এবং শরীরের বিকাশ তিনি অনেক আগে বলে গেছেন। এই যোগ পশ্চিমবঙ্গের পুরনো সংস্কৃতি, বেদ উপনিষদ গীতা থেকে শুরু করে এই যোগের কথা আমরা সবাই পড়েছি এই সমস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থে। 1920 সালে যোগানন্দ পরমহংসের হাত ধরে এখানে যোগের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। তার ভাই বিষ্ণুচরণ ঘোষ 1923 সালে এখানে যোগ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। আমি আর কথা বাড়াবো না, ইতিহাস আমরা জানি, আমি শুধু প্রণাম আর কৃতজ্ঞতা জানাব বাংলার গণদেবতা জনতা জনার্দনকে, আর ধন্যবাদ জানাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি পশ্চিম বাংলায় এই হারিয়ে যাওয়া ভুলিয়ে দেওয়া যোগকে 2026 আন্তর্জাতিক যোগ দিবস 12তমতে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, শত কোটি প্রণাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। ভারত মাতা কি।
2: That was the Honorable Chief Minister of West Bengal, Sri Shubhendu Adhikari, addressing the gathering on the occasion of the International Day of Yoga. And every yoga enthusiast, and we can see that the Honorable Minister for Municipal Affairs, Srimati Agnimitra Paul of the Government of West Bengal, is also among the lakhs of yoga enthusiasts who have assembled at the iconic Red Road. And the Honorable Chief Minister of West Bengal mentioned that more than 257,000 registrations have taken place for today's main ceremony here at the Red Road, and more than a crore yoga enthusiasts will join, especially in the state of West Bengal, from Darjeeling to Digha and from Kuchbihar to Kagdweep. And now we can see that the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi is walking towards the dais, where he will be performing the asanas and leading the nation today in performing yoga. And as we know that

21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का

आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग इसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर एनर्जेटिक एट 50 देन वी वेर एट 30। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर रेजिस्टेंट टू लाइफस्टाइल डिसीज एट 70 देन वी वेर एट 50। दिस इज वेर योगा कैन हेल्प अस। इट हेल्प्स अस ट्यून अवर बॉडीज टू बी फ्लेक्सिबल। इट कीप्स अवर एनर्जी लेवल हाई। इट ऑल्सो हेल्प्स अस मेंटेन अ काम स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड कीप एंड हेल्प टू कीप लाइफस्टाइल डिजीज अवे। मोर ओवर विथ रेगुलर प्रैक्टिस योगा टीचिज अस टू रिमेन लाइफ लॉन्ग लर्नर ऑफ अवर ओन बॉडीज एंड माइंड। द मोर वी नो अबाउट अवर सेल्फ द बेटर वी कैन मैनेज अवर सेल्फ। दैट इज वाई योगा फॉर हेल्दी एजिंग दिस थीम मस्ट बी सीन एज वन फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस, नॉट जस्ट फॉर द एल्डरली। साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रिया और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग

0: योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं। लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Room.

0: Lord Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister, who will lead in the day's yoga asanas celebrations here today.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूहों को संबोधित किया. माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया. और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या न हो, ये हमें फिर से याद दिलाया. माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है. योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है. हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से. माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे. माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है जिस पर कमल का फूल दमक रहा है. और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा. एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन हैं वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं बल्कि वो मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं. योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना.
0: Yes, and the Honourable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honourable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
1: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है. ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं. इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहां पर की जा रही है. हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं.
2: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दो चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दो हाथ के स्वाभाविक अवस्था में आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए.
1: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं
2: हम सब
1: और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं. पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है. योग साधकों के बीच
0: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट अराइव्ड and he will be going to the designated area and he has just arrived there and he will be performing the asanas from here and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
1: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है. सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की. विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है. और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूंगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं.
3: जी, ग्रीवा चालन जो

0: है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है
1: जी।
0: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं
1: जी।
0: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस संस्थान है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि सारी जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है
1: जी। यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ है, ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है। ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
0: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से
1: जी। और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं, और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
2: Guruji, Manish Naji, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
3: Yes, actually asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness. हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रीवासन है इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से, ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है। मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुंच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहां से शुरू होती है और ये बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो।
1: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है आध्यात्म में।
3: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस जानता नहीं है, है ना। अगर हम कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म, जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं, इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना। जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है, इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना, हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर उसका प्रेजेंस हमारे टोटालिटी पे रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं, हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
1: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं।
0: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है और थोरेसिक कैविटी

0: जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं
1: जी। और यहां पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहां पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहां समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
0: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चलाए जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं
1: जी,
0: एमएससी है, एमए है और पीएचडी है
1: जी।
0: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं, वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि
1: जी। मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
2: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
1: जी,
2: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे
1: जी।
2: तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है। आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है
1: जी। और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है। और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
0: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं, एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन
1: जी।
3: And as you were mentioning, Neelam, that today is the International Day of Yoga, and the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhamsa Yogananda set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone is indeed a gift for humanity.

0: by India to the world.
1: जी, यहाँ पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है. हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्धचक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए. और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को. हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है. और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है, जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है. यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से. प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
2: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है. ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है. साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है. और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है. और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है.
1: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ, लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है.
2: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है.
1: जी, और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं. यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है. और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नजदीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है. और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें. और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नजदीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं. और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके. और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक.
0: एंड वी कैन ऑल्सो सी नीलम एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज going to many enthusiasts and volunteers who have come here, and he is interacting with them and he is just pepping them up. This shows that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
1: जी बिल्कुल. और ये जो आसन है इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है. वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन हैं. और यहां हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए. और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए. अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए. और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं.
2: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं. और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है.

0: इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है. और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इम्प्रूव होता है. साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है
1: जी. और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है. माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं, और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया. माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथों की स्थिति को ठीक किया है और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में यहां पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य. कौशिक जी,
2: यस एब्सोल्युटली, एंड एज वी मेंशनड अर्लियर आल्सो, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
1: And now about this asana. अभ्यास किया जा रहा है शशक आसन का. खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशक आसन करते हैं, और यहां पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशक आसन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है. और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है. और अब यहां पर उत्तान मंडूक आसन का अभ्यास किया जाएगा. सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए उत्तान मंडूक आसन. प्रतिमा जी, इस आसन के बारे में आप हमें बताएं.
0: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडूक आसन. शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है, और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं. उसके जस्ट बाद जो काउंटर पॉस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडूक आसन, ये स्पेशली लेडीज के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है. साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है. साथ में मन को भी शांत करता है, और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है. एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये.
1: जी, और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है. तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है, और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है.
2: And now I think the enthusiasts are performing Vakrasana.
1: So, जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा. तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है. प्रतिमा जी,
0: बिल्कुल सही है कि ये हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है. ये मोड़कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है. तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव ज्यूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है. साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है, तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन.
1: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, हाँ, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन,
0: और फैट को भी रिड्यूस करता है.
1: जी.

0: और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और परखते हुए यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
1: जस्ट गाइडिंग देम टू डू दी उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं परफेक्ट मैनर। एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स।
2: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है। और ये इसमें देखेंगे आप, जब हम जनरली पीठ के बल लेटते हैं, इसमें पेट के बल लेटना होता है। और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है, उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है। और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं, और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं, टोज बाहर की तरफ हैं, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है
0: जी।
2: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं। साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है, उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है। साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये
0: जी। और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है। हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है। तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर, उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चले। मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है, बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं। और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहाँ पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके लाभ, डॉक्टर प्रतिमा,
2: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे। ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है। और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है। स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है। ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी ये आसन बेनिफिशियल कहा जाता है। और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं
0: जी। गुरु मुनीश सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रही हैं। आपका क्या विचार है, क्या योग को हमारी स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
3: जरूर जरूर। एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही, बहुत छोटे कॉन्शियसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं। और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूं कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो, वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं। इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता हूं मैं। बहुत ही सुंदर
0: जी।
3: बहुत ही,
0: और यहाँ पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना। और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना, सेतु बंध आसन। इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी।
2: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम
0: जी,
2: बॉडी और माइंड।

0: का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है
1: जी।
0: और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से। और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं उनके उन पर भी काम होता है। सेतु बंधासन
1: जी, सेतु बंधासन। और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात यह भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान सी कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्ध हल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है, और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी, ताकि सहज भाव से कर सके। अर्ध हल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर, और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
0: पवन मुक्त आसन जो है आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोस्चर है ये
1: जी,
0: और पवन मुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पवन मुक्त आसन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु विकार से संबंधित होते हैं, तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं, तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके कि वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है
1: जी। गुरु मुनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
2: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध
1: जी।
2: हमारी चित्त की वृत्तियां अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियां ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, आपकी वृत्तियां ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें, इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है, हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और खास करके मेडिटेशन और खास करके योग और ये सारी चीजें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाए, ये बहुत जरूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की जिंदगी जिया जाए, है ना। योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त की कंट्रोल नहीं है, जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
3: डॉक्टर प्रतिमा, नाउ आई थिंक वी आर सीइंग द कपालभाति, सो यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट।
0: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कपालभाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाती मतलब वो जो आपने लोहा

0: होगा उसको जो धोपनी चलाता है उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन कपालभाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और योग एज सच जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपालभाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहां मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी, गारंटी फॉर हेल्थ हैप्पीनेस एंड हार्मोनी, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही, जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरेक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
1: जी, और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं। और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहजासन में, सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है डॉक्टर प्रतिमा?
0: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है, उन सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है। प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन के क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयाम मीन्स लॉन्ग करना, लंबा करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामीन युक्तिन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगिन सर्व रोग समुद्भवा। मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है। लेकिन यहाँ पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगिन सर्व रोग समुद्भवा, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। ये भी कहा गया है युक्तम युक्तम त्यजेद वायु युक्तम युक्तम च पूरयेद, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं।
1: जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के, किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं, तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
0: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है, वात सॉरी पित्त जो है हमारा, उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही।
1: जी, जठराग्नि को पूरी तरह से व्यवस्थित कर देता है।
0: जी, और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है।
1: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद।
0: क्यों? क्योंकि ये हमिंग बी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षण्मुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है। डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये।
1: जी,
0: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और

0: दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
1: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज हैं, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी।
0: जी, भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें,
2: और बाहर से कनेक्शन कट भी करना होता है ताकि हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है, तो हम अपने आप से जुड़ पाए,
0: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं, अपने भीतर हम जाते हैं।
3: नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द आसनास, दैट इज ध्यान और मेडिटेशन, विच इज अ टाइम फॉर आवर सेल्फ असेसमेंट एंड बिकमिंग वन विद द यूनिवर्स। डॉक्टर प्रतिमा,
2: मेडिटेशन इज नॉट जस्ट मेडिटेशन, इट इज मेडिकेशन ऑफ बॉडी एज वेल एज माइंड। क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है।
1: जी, और गुरु मुनेश रैना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
4: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहां जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है, और कई लोग ध्यान की सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है। सारी अपॉर्चुनिटी इन्फॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित है, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है, और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। सारी चीजें, मैंने लाइफ बताऊं कि मेरी स्पाइन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा। मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा, और विद इन 3 मंथ्स मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं ध्यान के, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है, और जो परम स्वरूप है ना, वही आदि स्वरूप है, वही शिव है, वही अनंत है, वही चैतन्य है।
1: जी, आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान। और यहाँ पर अब प्रार्थना,
5: शांति
1: मंत्र का पाठ किया जा रहा है।
5: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों पर,
1: और जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है,
5: और धीरे धीरे
1: ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं। और मैं गुरुजी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं, और साथ ही हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है, और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूं जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं, और आप एक नेट की तरह हो जाते हैं। आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है। तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई।
3: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज नाउ मेकिंग

0: asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yogasanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
1: जी, जल थल नभ सभी योग में होंगे. हम जानते हैं कि भारत में तो सूर्योदय जब हो रहा है तो हमने नमस्कार किया है और साथ ही योग अभ्यास किया है. दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें जहां जहां भारतीय दूतावास हैं उनकी ओर से विशेष आयोजन होंगे. और अब क्योंकि बहुत सारे देश दुनिया के योग को अपना चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है. कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं, और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है. तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है. और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाएं बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें.
0: योगा 365, दैट इज व्हाट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड मेंशनड. एंड वी वुड आल्सो लाइक टू इन्फॉर्म our listeners that as the Honorable Prime Minister has mentioned that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace but also yoga. And this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga, as it promotes not only healthy lifestyle, but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munesh Sinhaji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our audience?
2: Yes, सबसे पहले मैं जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आना चाहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में वो ना जाएं, सिर्फ स्टैचू बन के 10 मिनट रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें. एक समय चुनें 10 मिनट या 15 मिनट, वो सिर्फ स्टैचू हो जाएं. जैसे बच्चे में हम लोग स्टैचू गेम खेलते थे, चलते चलते अचानक कोई स्टैचू चिल्लाता था और हम जिस पोजीशन में होते थे उसी पोजीशन में रुक जाते थे. अपने जीवन में भी आप अपनी किसी एक फेवरेट जगह पे, घर के किसी कोने में आप बैठें और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाएं. और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है, वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी. कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनस्पटल के इसमें चलती चली जाती हैं. आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस. मैं एक विटनेसर हूं जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूं. मैं एक दृष्टा हूं. द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है. आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है. जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है. फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है. फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और सिर्फ बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास. इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते. ह्यूमन जितने भी इस पूरी पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं, उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है, इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं।

0: द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वर्ल्डली लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शियसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शियसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूंगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं तो ध्यान करें। इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीजें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक हो रही है, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब एक होती है तो प्रकृति की भी कॉन्शियसनेस एक होती है, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है। जो हम हैं वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम हैं।
1: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हमें बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है, और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियां यहाँ पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे, मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
2: Yes, and as Guru Munish Sinha ji mentioned, and as you also mentioned, Neelam ji, that today we saw the Honorable Prime Minister lead the nation in performing yogasana at the Red Road, Kolkata. But at the same time also, yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road, there flows the river Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats, yoga enthusiasts performed yogasanas there. And in the wonderful mangrove of Sundarbans also, people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our border security force personnel performed yogasana on the Thar desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
1: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल, थल, नभ सभी आज योग में होंगे, और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में, कार्यालयों में, संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं। इन दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो है वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं। 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए। और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है, और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं, हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं। और हम

0: सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनके जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है, तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है। स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं। आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है। और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा है, क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है, सभी की एक निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना। विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं। आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग। आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना। मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स। मैं नीलम मलकानी अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आप वहां पर सलाहकार, डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
3: आकाशवाणीचं हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। श्रोतेहो यानंतर ठीक 8 वाजता समाचार प्रभात, 8:15 मॉर्निंग न्यूज दिल्ली केंद्रावरून आणि 8:30 राष्ट्रीय बातमीपत्र मुंबई केंद्रावरून सहक्षेपित करत आहोत।

0: और अब मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे तीन टैंकरों ने होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र

0: का पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
0: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्म कुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।

0: अनेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
1: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
3: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविन्द्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया।

0: है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
1: धन्यवाद भरत। एनटीए ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट यूजी पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्धि योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस। हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
0: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर है। सैयद मेराज अली से इलाकाई खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। बढ़ती उम्र में योगा सबके लिए इजाफी तवानाई और बेहतर कुव्वते मुदाफियत के लिए मुआविन है। 12वें आलमी योगा दिन के मौके पर वजीर आजम का बयान। आज मुल्क भर के 551 शहरों और बैरून ममालिक के 14 शहरों में नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान का इनेखाद। कांग्रेस रहनुमा पवन राजे निम्बालकर कत्ल मुकदमे से साबिक वजीर पद्म सिंह पाटिल बरी। छत्रपति संभाजीनगर के 5 नौजवान गणपति पुड़े के समंदर में गरखाब। परभनी जिले के यशवाड़ी में मंदिर की छत मुनदिम होने से 5 अकीदतमंदों की मौत। और एक रोजा क्रिकेट मैचेस की सीरीज में भारत की अफगानिस्तान पर नाकाबिले तस्खीर फतह। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योगा हर शख्स के लिए इजाफी तवानाई बख्श और बढ़ती उम्र के साथ बेहतर कुव्वते मुदाफियत में मुआविन है। आज 12वें बैनुल अक्वामी योगा दिन के मौके पर वजीर आजम कोलकाता के तारीखी लाल रास्ते पर योगा मश के लिए मुनक़िदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योगा इस साल के योगा दिन का तस्वीर है। यौम योगा पर दुनिया के तमाम शहरियों को मुबारकबाद देते हुए वजीर आजम ने कहा,
1: देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा, पूरा देश पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता, योग सबको साथ लाता। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: इस मौके पर मगरबी बंगाल के गवर्नर आर एन रवि, वजीर आला शुभेंदु अधिकारी, मरकजी वजीर आयुष प्रताप राव जाधव और कई दीगर शख्सियात मौजूद थी। इस मौके पर वजीर आजम समेत तमाम अफराद ने योगा की अमली मश्क की। दरियासना

पारसमल जैन की गवाही पर ही सरकारी गवाही का इन्हिसार था, लेकिन अदालत ने उनकी गवाही को मोतबर न समझते हुए मुस्तरद कर दिया। सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ अदालत आलिया में अपील करने की वजाहत की है। पवन राजे निम्बालकर और उनके ड्राइवर समत खाजी को 2006 में मुंबई के कड़मबोली में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। छत्रपति संभाजीनगर जिले के 5 नौजवान कल रत्नागिरी के गणपतिपुड़े के समंदर में गरकाब हो गए। पैठन तालुके के बिड़किन से 19 सैया गणपतिपुड़े गए थे। इनमें से 8 सैया कल सुबह तैराकी के लिए समंदर में गए थे, लेकिन पानी की गहराई का अंदाजा न होने की वजह से तमाम 8 अफराद डूब गए, जिनमें से 3 को बचा लिया गया है। ताहम 5 अफराद हनूज लापता है। रत्नागिरी जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट नितिन बगाटे ने बताया कि सभी लापता सैयाहों की तलाश जारी है। परभनी जिले के मानवत तालुके के यशवाड़ी में त्रिमूर्ति हनुमान मंदिर की इजलासगाह की छत गिरने से 5 अकीदतमंदों की मौत हो गई और 16 अकीदतमंद जख्मी हो गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस ने इस हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार किया और महलूकीन के वर्षा को 5 लाख रूपये इमदाद देने का ऐलान किया है। इसी दौरान परभनी की राबता वजीर मेघना साकोरे बोर्डिकर ने अस्पताल पहुंचकर मुतासरीन की आदत की और जाय वखुआ का भी मुआयना किया। मराठवाड़ा साहित्य परिषद के तसनीफी अवार्ड कल छत्रपति संभाजीनगर में तकसीम किए गए। डॉक्टर साहेबराव खंदारे को नरेंद्र मोहरीर अदबी अवार्ड से नवाजा गया, जबकि डॉक्टर अनुराग लवेकर को नरहर कुरुंदकर अवार्ड, डॉक्टर शिव कदम को मोभी चिटनिस अवार्ड और क्षितिज देसाई को बी रघुनाथ अदबी अवार्ड से नवाजा गया। क्रिकेट। भारत और अफगानिस्तान के माबैन खेली गई एक रोजा मैचों की सीरीज भारत ने 3-0 से जीत ली है। कल चेन्नई में खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी एक रोजा मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और भारत को जीत के लिए 219 रन का हदफ दिया। भारत ने यह हदफ 29वें ओवर में यशस्वी जायसवाल के नाकाबिले शिकस्त 110 और रोहित शर्मा के 70 रन की मदद से हासिल कर लिया। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। बढ़ती उम्र में योगा सबके लिए इजाफी तवानाई और बेहतर क़ुव्वत मुदाफियत के लिए मुआविन है, वज़ीर आज़म का बयान। आज मुल्क भर के 551 शहरों में नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान का इनेकाद। और परभनी जिले के यशवाड़ी में मंदिर की छत मुनदिम होने से 5 अकीदतमंदों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी से इलाकाई खबरें खत्म हुई। इसके बाद हमारे मरकज का अगला मराठी बुलेटिन सुबह 11 बजे नशर होगा।

0: शुभ
1: प्रणाम। मैं महर्षियों का चेला किसी की खातिर देखने आया हूँ आपका ये मेला।
0: महाराज
1: यस
0: योगी
1: दैट्स राइट
0: वेलकम
1: थैंक यू।

सुनकारी प्रोग्रामी सामिन वे आप समाप्त फरमा रहे थे भाई दर्शन सिंह निर्मल और हमनवाओं का गाया ये शब्द। इसके साथ ही आज का सुबगाही प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम आज सवेरे।

0: और इससे पहले कि हम इतिहास को पन्नों को पलटें, अपने श्रोताओं को जानकारी दे दें शगुन के आज वर्ल्ड म्यूजिक डे यानी कि विश्व संगीत दिवस है। शायर अब्तिलक बिनाम ने क्या खूब कहा है कि कभी मैं कोई तान छेड़ूं, कभी तुम कुछ गुनगुनाओ, ये जीवन संगीत बस यूं ही चलता है।
1: वाओ।
0: जी हाँ, आज दिन की शुरुआत एक सुंदर सुरीले संगीत से हो जाए तो सारा दिन ही सुरीला बन जाता है और इतनी अच्छी तरोताजगी का एहसास हो जाता है कि लगता है कि उसे शब्दों में कैसे बयां करें। लेकिन बयां तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आज है वर्ल्ड म्यूजिक डे यानी कि विश्व संगीत दिवस, जो हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस को फेटे डीला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ म्यूजिक फेस्टिवल है। इसकी शुरुआत 1982 में फ्रांस में हुई और शगुन इसको मनाने का उद्देश्य अलग अलग तरीके से म्यूजिक का प्रोपेगेंडा तैयार करने के अलावा एक्सपर्ट और नए कलाकारों को एक मंच पर लाना भी है। और आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ।
2: 1893, the world's first Ferris wheel designed by George Washington Gale. It was opened to the public at the World's Columbian Exposition in Chicago. 1997, the Women's National Basketball Association debuted with the first game played between New York Liberty and the Los Angeles Sparks.
0: और अब समय हो गया है कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बात करने का। तो इस क्रम में आज सबसे पहला नाम है केशव बलराम हेडगेवार का, जिनका जन्म हुआ 1 अप्रैल 1889 को और निधन 21 जून 1940 को। केशव बलराम हेडगेवार भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना समूचा जीवन हिंदू समाज और राष्ट्र

के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर हेडगेवार पहले क्रांतिकारी थे किंतु बाद में हिंदू संगठनवादी बन गए। उन्होंने हिंदुओं के संगठन के लिए ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और केशव बलिराम हेडगेवार अपने जीवन के प्रारंभ और मध्यकाल में क्रांतिकारी थे। उनका अरविंद घोष, भाई परमानंद, सुखदेव एवं राजगुरु आदि महान क्रांतिकारियों से संपर्क था और विद्यार्थी जीवन में उन्होंने वंदे मातरम आंदोलन चलाया था। और यही नहीं, सन 1921 के असहयोग आंदोलन में भी आपने हिस्सा लिया और एक साल जेल में बिताया। जयंतियों के क्रम में आज सबसे पहले जानकारी विष्णु प्रभाकर जी के बारे में, जो अपने साहित्य में भारतीय वागीमता और अस्मिता को व्यंजित करने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। आपका जन्म हुआ 21 जून 1892 को और आपने संसार से विदा ली 11 अप्रैल 2009 को। विष्णु प्रभाकर

0: तिथि 11 अप्रैल 2009 को विष्णु प्रभाकर जी ने कहानी, उपन्यासकार, नाटक, जीवनी, निबंध, एकांकी, यात्रा वृतांत और कविता आदि प्रमुख विधाओं में अपनी बहुमूल्य रचनाएं की हैं। प्रभाकर जी ने आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाओं और प्रकाशन संबंधी मीडिया के प्रत्येक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी।
1: Today, listeners, we are also remembering Reema Lagu, who was so much more than just Bollywood's favorite mother, known for her maternal roles in some of Hindi cinema's biggest hits. Well, Reema Lagu also made screen. So from Marathi theater and cinema to memorable roles in some of Bollywood's biggest hits.
0: और अब बात करते हैं और जानकारी देते हैं अपने श्रोताओं को भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक और व्यंगकार मधुरा राक्षस के बारे में, जिनका जन्म हुआ 21 जून 1933 लखनऊ में और निधन 13 जून 2016 को। मधुरा राक्षस के साहित्य का अंग्रेजी सहित दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। वे अकेले ऐसे लेखक थे शगुन जिनके सामाजिक सरोकारों के लिए उन्हें जन संगठनों द्वारा सिक्कों से तोलकर सम्मानित किया गया था।
1: Well, today we are also remembering R.K. Shekhar, the music composer who worked mainly for Malayalam movies. He composed music for 52 films, 23 Malayalam with 127 songs to his name, and was the music conductor for more than 100 films.
2: Samin, we are listening to the program Aaj Savere. मीडियम में भी 71 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की निशानियात। 9:50 हुए हैं, खबरें नशर होंगी।

ये आकाशवाणी है, अब आप फहीम अहमद से खबरें सुनिए। आज दुनिया भर में योग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रोड से मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की क़यादत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में 3 बहरी जंगी जहाज़ों INS द्रोणागिरी, INS संशोधक और INS एग्रे को पानी में उतारकर बहरिया में शामिल करने की रस्म भी अंजाम देंगे। इम्तिहान मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी आज से पहर भारत और बैरून मुल्क में नीट EUG के दोबारा इम्तिहान मुनक़िद कराएगी। भारतीय परचमबरदार 3 ऑयल टैंकर्स ने कामयाबी के साथ आबनाए हुरमुज पार कर लिया है, जिसमें 8.6 लाख से ज्यादा मेट्रिक टन तेल लदा है। महकमे मौसमियात ने आज ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में आज सुबह दम्बोला में 3 मुल्कों की सीरीज के फाइनल में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अब खबरें तफसील से। आज भारत और दुनिया भर में योग का 12वां आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज योग का मौजू है सेहतमंद बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद सरगर्म और बावकार बढ़ती उम्र की खातिर योग को जिंदगी भर अपनाने की अहमियत को उजागर होती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रोड से योग के 12वें बैन अल-क़ौमी दिन की कौमी तकरीब की क़यादत की, जहां आज सुबह हजारों लोग सुबह से ही योग आसन में उनके साथ शामिल हुए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि योग महज जिस्मानी वर्जिश नहीं है और न किसी उम्र के लोगों तक महदूद है, ये इंसानी जज्बे का इजहार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें योग को किसी मखसूस मौके तक महदूद नहीं रखना चाहिए, इसे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। 2015 में योग के आलमी दिन के शुरू होने के बाद वज़ीर आज़म ने नई दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, मैसूर, न्यूयॉर्क, श्रीनगर और विशाखापट्टनम समेत मुख्तलिफ मकामात से योग तकरीबात की क़यादत की। बहुत से मरकजी वज़रा, रियासती वज़रा और सीनियर अहलकार भी योग के दिन की तकरीबात में हिस्सा ले रहे हैं, जिसका एहतमाम मुल्क भर में किया जा रहा है। कौमी तकरीब से सेहत, हमांगी और इज्तिमाई बहबूद को फ़रोग देते हुए एक आलमी तहरीक के तौर पर योग के बढ़ते हुए रोल का इरादा होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में रियासती सतह के योग के आलमी दिन के प्रोग्राम में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। ये तकरीब सदर में गैरिसन ग्राउंड में मुनक़िद हुई थी। योग के दिन की तकरीब के बाद सदर जमहूरिया रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, जहां वो मेहमान खसूसी की हैसियत से यूनिवर्सिटी की 36वीं तकसीम असनाद की तकरीब में शिरकत करेंगी। गवर्नर मंगूभाई पटेल भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद में सदर जमहूरिया कोनो

0: रात हो डॉट आणि उडी उडाण डॉट
1: डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है।

आमोश जले को आग कहते हैं, बुझे को राग कहते हैं, जिस राग से बारूद बनती है उसी को लक्ष्मीकांत कहते हैं।

खोपड़ी टूटने की आवाज सुनी तुम लोगों ने? अरे अभी तो लक्ष्य का एक हाथ गया रे, लक्ष्य का दोनों हाथ दोनों पैर भी गया ना, लक्ष्य किसी के सामने झुकेगा नहीं, क्या समझे? नहीं समझे, चल फो

0: बंद कर तो जरा गाण, जरा दाखो के हंगामा।
1: हंगामा जय हंगामा, कहां गई मेरी गंगम्मा, टकले से घाबर गई क्या, आ दिखाता हूं तुझे हंगामा।

मत गंगू, ये तो दुनिया की रीत है। अरे ये दुनिया वाले न तो खुद चैन से जीते हैं, न दूसरों को चैन से जीने देते हैं। आई हेट टीयर्स गंगू, इन आंसुओं को पोछ दो, ये बहुत कीमती है रे।

0: नवीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि इन जंगी बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल किया जाना भारत के मुस्तकबिल का एक इशारा है। अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क में न सिर्फ दिफाई सामान की तैयारी में तेजी के साथ इजाफा हुआ है बल्कि दिफाई सामान की बरामदात भी तेजी के साथ बढ़ गई हैं, जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती।
0: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि INS संशोधक, INS दूनागिरी और INS आगरे को बहरिया में शामिल किया जाना भारत की बहरी सलाहियत के फरोग में एक अहम लम्हा है। आज मुल्क भर में 5,000 से ज्यादा मराकज और बैरून मुल्क 14 मराकज में नीट UG का दोबारा इम्तिहान सख्त सिक्योरिटी में कराया जा रहा है। भारत में 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 22,79,000 से ज्यादा उम्मीदवार ये इम्तिहान दे रहे हैं। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी NTA ने नीट UG का दोबारा इम्तिहान देने वाले तलबा के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इधर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने तलबा पर जोर दिया है कि वो खौफ होकर इम्तिहान दें। अमरीका के नायब सदर JD वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अमरीका ईरान के साथ मुजाकरात का ढांचा तैयार करेगा और इसके साथ ही न्यूक्लियाई मामलात पर पेशरफ्त होने का इम्कान है। ईरान से भी एक वफद स्विट्जरलैंड पहुंच गया है और उसने खबरदार किया है कि लेबनान में जंगबंदी से पहले बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। इसके कुछ घंटे पहले ईरान ने कहा था कि लेबनान में इसराइली हमलों की वजह से अबनाए हुरमुज को बंद कर दिया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाली बंगाल और सिक्किम में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक आसाम और मेघालय में कहीं कहीं तेज से लेकर बहुत तेज बारिश होने का इम्कान है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, बिहार, साहिली कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी शदीद बारिश होने की पेशगोई की गई है। क्रिकेट में दाम्बुला में तीन मुल्कों की ए सीरीज के फाइनल मैच में भारत ने श्रीलंका के सामने 378 रन का निशाना रखा है। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 11 गेंदों पर सबसे तेज रफ्तार हाफ सेंचुरी बनाई। सूर्यवंशी ने सिर्फ 29 गेंदों पर धुआंधार 94 रन स्कोर किए। उन्होंने 10 चौके और 8 छक्के लगाए। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जहनी तंदुरुस्ती से लेकर जिस्मानी तंदुरुस्ती तक रहनुमाई में योग के रोल पर जोर दिया है। वजीर आजम ने आज योग के 12वें बैन अलाक्वामी दिन के मौके पर कोलकाता में कौमी तकरीब की क्यादत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाजों को शामिल किए जाने की रस्म अंजाम दी और कहा कि अंदरून मुल्क दिफाई सामान की तैयारी की सलाहियत बढ़ाने के लिए खसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क भर के 5,000 से ज्यादा मराकज और बैरून मुल्क 14 मराकज में नीट UG का दोबारा इम्तिहान सख्त सिक्योरिटी में कराया जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: FM 101.7 मेगाहर्ट्ज वर आकाशवाणीचे हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। श्रोते हो 2 वाजलेत। ऐकूया हिंदी चित्रपट गीतांचा कार्यक्रम। सुरुवातीला ऐकूया आराधना या चित्रपटातलं हे गीत। मोहम्मद रफी आणि लता मंगेशकर यांचा स्वर, आनंद बक्षी यांची रचना आणि संगीत, सचिन देव बर्मन यांचं।
3: अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है?
4: क्या?
3: मैंने पूछा बागों में बाहर है?
4: है।
3: गलियों पे निहार है?
4: हाँ है।
3: तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: एसएच बिहारी के बोलों को सुरों में ढला उपेन अय्यर ने आशा भोसले का गाया सावन की घटा फिल्म का गीत आपने सुना। इस गीत से पहले श्रोताओं हमने आपको सुनवाया सूरज फिल्म का नगमा, हसरत जयपुरी का लिखा शंकर जयकिशन की तरसी, मोहम्मद रफी की आवाज थी।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जवां दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का
1: इस मंगलवार

0: सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

पराया धन फिल्म में आप सुन रहे थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी और गीतकार आनंद बख्शी।

0: तीन देवियां फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में एसडी बर्मन की तर्ज थी। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और इस गीत के पहले श्रोताओं परख फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था। लता मंगेशकर की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल थे, सलिल चौधरी का संगीत था। सदाबहार नव में कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे।
2: विविध भारतीचे कार्यक्रम आताच आपण ऐकले। मुंबई केंद्रावरून आम्ही ते संक्षेपित केलेत। FM बँड 101.7 आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर केंद्र। श्रोते हो, दुपारचे 3 वाजतायत। प्रादेशिक बातमीपत्र मुंबई केंद्रावरून आम्ही आता संक्षेपित करीत आहोत।

ये गीत आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे। इस गीत की पसंद भेजी राजस्थान से पूजा खटक, विमला देवी, शंभु दयाल खटक ने, और उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर की ये फरमाइश थी।

खिलौना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोता, इस गीत की पसंद की कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव, मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी। इसी गीत को सुनना चाह बीकानेर से कैलाश सोनी, गोविंदा सोनी, उत्तम सोनी और कोटा से शिखा, सीमा, प्रीति, सपना, संध्या मानस और शालू ठाकुर की फरमाइश थी।

कुछ है सब आधा आधा है, दुख सुख के हम साथी है ये वादा है। अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, जो ये सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है तो अरे राम।

धर्मवीर फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी मुकेश की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोताओं, इस गीत को पसंद किया भाटापारा से, छत्तीसगढ़ भाटापारा से गनुलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम, छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, भिलाई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन और शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार, नसीन परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा, हिना कौसर, सितारा और इस गीत की फरमाइश की जालंधर से रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने। विविध भारती का ये कार्यक्रम है मन चाहे गीत।

लता मंगेशकर का गाया फिल्म आंखें का गीत आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत है श्रोताओं ये, और इस गीत को पसंद किया इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धामतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम और सावित्री साहू।

इस गीत को सुनना चाहा शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नईम इदरीसी, नदीम इदरीसी ने, और इस गीत के लिए सादुर शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान की फरमाइश आई और इसी गीत को सुनना चाहते थे बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज, विकास सक्सेना और चंचला कश्यप। मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम श्रोताओं अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को और भेजते रहिए पत्र मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए।

0: यह है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवा रहे हैं नाटक मृत्युहीन प्राण का दूसरा और अंतिम भाग। आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का ये हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवादक हैं दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार।
2: जुडू।
3: यस सर।
2: बेंजामिन कुछ बता रहा है? कुछ मुंह खोला उसने?
3: नहीं सर, कुछ नहीं बोलता।
2: व्हाट, 48 घंटे हो गए और अभी तक मुंह से बोल नहीं फूटे? दरअसल बात यह है जुडू,

0: कि तुम्हारे शरीर में काले लोगों का खून भी तो कुछ कुछ मौजूद है, तभी उनके मामलों में रहम की मात्रा जरा कुछ बढ़ सी जाती है।
1: क्या क्या कह रहे हैं आप सर?
0: मैं ये कह रहा हूं कि जरा सख्ती के साथ दवा का डोज तो अपने आप मुंह से बोल फूट पड़ेंगे।
1: मिस्टर थॉमसन, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, पर क्या करूं, कमबख्त के मुंह से एक बात तक नहीं निकल रही, बात के बदले कस के सिर्फ खून निकल रहा है।
0: खून के साथ साथ बातें भी निकालनी होगी, इट्स मस्ट, कमिश्नर साहब का हुक्म है। चलो एक बार मैं खुद ही कोशिश कर देखता हूं।
1: यस सर।

0: हेलो मिस्टर मोलाइज, अपने बारे में नए सिरे से कुछ सोचा आपने?
1: अपने बारे में बाला, मुझे सोचने की क्या जरूरत है? इसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों ने खुद ही ले रखी है।
0: फिलिस सिलेपी का खून आपने नहीं किया?
1: नहीं।
0: तो फिर किसने, किन लोगों ने किया, इसे तो आप जरूर जानते होंगे।
1: नहीं जानता।
2: हमारे पास ऐसी खबर है कि उस निरीह भले आदमी फिलिप्स को जान से मार डालने के लिए आप लोगों की एक गुप्त मीटिंग हुई थी।
1: एक काले आदमी के लिए अचानक आप लोगों को इतना दर्द क्यों होने लगा है?
0: ये देश की कानून व्यवस्था का प्रश्न है।
1: कानून व्यवस्था या आप लोगों के प्यारे जासूस की मौत हो गई है, इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है आपको मिस्टर थॉमसन।
0: जासूस समझकर उसे बुलेट से छलनी बना डाला, वाह बहुत खूब।
1: बुलेट चलाना तो आप लोगों का खानदानी पेशा है, मेरा हाथ कलम से सिर्फ कविताएं लिखता है।
0: कविताएं लिखता है क्यों? यू ब्लैकी रास्कल, उस साथ को हम जॉन्सबर्ग ट्रेजरी लूटते वक्त इसी हाथ में राइफल थी ना? क्यों थी ना?
1: नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं थी। अगर अगर किसी दिन रही तो समझिएगा, उसे ऐसा करने के लिए आप लोगों ने ही मजबूर किया है।
0: हम लोगों ने?
1: हाँ, आप लोगों ने। आप लोग बहुसंख्यक काले लोगों के पैरों में बेड़ियां डालकर सारे देश को लूट रहे हैं। मार खाते खाते दीवारों से लग गई है पीठ हमारी, लेकिन लेकिन जिंदा रहने की खातिर अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो क्या ये अन्याय है?
2: 100% अन्याय है।
0: जुडो, इस तरह काम नहीं चलेगा, इसके लिए खास इंतजाम करने की जरूरत है। देखते हैं कैसे मुंह नहीं खुलता।
2: यस सर।
0: बोलिए, कुछ तो बोलिए मिस्टर मोलाइज, नहीं तो जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा। आग की तरह लाल दो सलाखें आपके बदन के कुछ खास हिस्सों पर तबाह कर रखी जाएंगी, कुचला जाएगा उन हिस्सों को सलाखों से। अब आप समझ ही रहे होंगे कि वो नजारा क्या होगा।
1: आप लोग खुद को शिष्ट समझते हैं, शिष्टाचार का दम भरते हैं, लेकिन लेकिन जी, जंगल के पशु भी शर्माते हैं आप लोगों के व्यवहार से।
2: सर, मैं रेडी हूं।
0: ठीक, देन स्टार्ट।
2: कहिए, फिलिप्स का खून किसने किया? बताइए, कब खून किया, कहां किया?
1: नहीं मालूम, नहीं मालूम,
2: नहीं मालूम,
1: नहीं मालूम,
2: नहीं मालूम, नहीं मालूम।
0: बोलिए।

0: बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए ना, ये तो बेहोश हो गया।
1: लगता है सहन शक्ति बहुत ही कम है। होश मिलाओ इसे, बाद में फिर कोशिश करेंगे।

0: ना ना जिनी, तुम मुझे खाने के लिए जिद ना करो बेटी। कोई भी खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा।
1: जरा सा दूध तो पी लो मौसी।
0: ना ना, इस वक्त कुछ नहीं लूंगी बेटी।
1: तुम बैठो, मैं करम करके लाती हूँ।
0: जेल में बेंच को शायद खाने को भी नहीं देते हो। अब फिर कौन आ गया? क्या बात है, आप लोग फिर आ गए?
2: सॉरी मिसेस मोरेस, आपको थोड़ी सी तकलीफ देने आ गए।
0: आखिर आप लोग चाहते क्या हैं?
2: बस दो एक बातें पूछना चाहते हैं आपसे।
0: उसके पहले मेहरबानी करके बताएंगे कि किस जुर्म में मेरे बच्चे को जेल के सीखचों के अंदर बंद किया गया है?
2: फिलिप सिलेपी की हत्या के जुर्म में।
0: झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मेरे बच्चे ने हत्या नहीं की है। क्यों झूठ मूठ मेरे बेटे को खून के इल्जाम में फंसा रहे हो?
2: हम लोग तो कानून के गुलाम हैं मिसेस मोलेस।
0: आप लोगों के कानून तो हमारे जैसे काले लोगों की गर्दन दबोचने के लिए हैं।
2: ओह नो नो नो नो, ये आप लोगों की गलत धारणा है।
0: अच्छा साहब बहादुर, क्या आप लोग कोई ऐसी दवा नहीं दे सकते जिसे बदन पर लगाने से हमारे शरीर के रंग भी सफेद हो जाएं?
2: सुन रहे हो जुडू, मिसेस मोलेस क्या फरमा रही हैं?
3: हाँ सर, सुन रहा हूँ।
4: अच्छा मान लीजिए, अगर आप लोग सफेद चमड़ी के होते तो क्या करते मिसेस मोलेस?
0: तो हमारे लिए कांटे वाले तारों से घिरा बांडुस्तान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।
3: सर लगता है बेंजामिन ने अपनी माँ को भी तैयार कर पक्का कर दिया है।
2: अरे वो तो करेगा ही जुडू, नहीं तो खून खराबा करके आने के बाद हाथ धोने के लिए पानी कौन देगा?
0: आप लोगों को जो कुछ भी कहना है कह डालिए और मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए, मुझे खुशी होगी।
2: यस यस यस, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपका बेटा बेंजामिन किन लोगों के साथ मिलता जुलता था?
0: बहुत के साथ, उसके बहुत से दोस्त हैं।
2: हाँ, बहुत से दोस्तों को तो हम पहचानते हैं। खास दोस्तों में जैसे समझिए जेने रोयांगा, रॉबिन खाबड़कर, मिस्टर।
0: नहीं, ये सारे नाम मैंने पहले कभी नहीं सुने।
5: मौसी दूध ठंडा हो रहा है, ले आऊं?
0: नहीं, मैं ही आऊंगी थोड़ी देर बाद।
2: ये कौन बोले? किसी युवती की आवाज लगती है।
0: मेरे एक पड़ोसी दोस्त की लड़की है।
2: जरा उसे बुलाइए।
0: क्यों, उसकी क्या जरूरत है?
2: घर में आपके सिवा और तो किसी को देखा नहीं इसके पहले, इसीलिए आप जरा हमें ये भी देखने की जरूरत है कि इस घर में किस किस का आना जाना है।
5: ये लीजिए, मैं आ गई, देखिए।
2: क्या नाम है तुम्हारा?
5: जिनी पैराम्बा।
2: क्या करती हो?
5: कॉलेज में पढ़ती हूँ।
3: सर लगता है इसे कहीं देखा है।
5: कहीं सड़क बाजार या कॉलेज जाते समय देख लिया होगा।
3: ऐसे नहीं, कहीं और देखा है।
2: यस, याद आया, अभी कुछ दिनों पहले एक सुनसान पार्क में तुम्हारे साथ हमारी मतलब हम दोनों के साथ तुम्हारी मुलाकात हुई थी।
3: हाँ, वहाँ चुपके चुपके प्रेम करने या किसी से मिलने गई थी। क्यों, गई थी ना?
2: क्वाइट इंटरेस्टिंग अफेयर। अच्छा मिस पैराम्बा, तुम जरूर बेंजामिन को चाहती हो? अच्छा तो फिर उसकी कविताओं को भी जरूर चाहती होंगी?
5: जी हाँ चाहती हूँ, बहुत तेरे चाहते हैं।
2: पर क्या तुम ये जानती हो कि बेंजामिन जिस हाथ से कविताएं लिखता है उसी हाथ से आदमी का खून भी करता है?
5: जी नहीं, मुझे यकीन नहीं है इस बात पर।
2: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे भी यकीन नहीं है, पर कुछ चारा भी तो नहीं है, इसीलिए मुझे जरूरत है तुम्हारी।
5: जी, मेरी?

0: अब इसे बीच में क्यों घसीट रहे हैं अफसर साहब?
1: प्लीज मिसेस मोलायर, जिनी तुम ये जरूर चाहोगे कि बेंजामिन बेगुनाह साबित होकर फिर तुम्हारे बीच वापस आ जाए?
2: आप कहना क्या चाहते हैं?
1: मैं ये कह रहा हूँ, मतलब ये चाहता हूँ सिर्फ थोड़ी सी मदद जो तुम्हारे बेंजामिन को तुम्हारे पास ही वापस ला देगी। आओ मेरे साथ आओ।
0: नहीं, वो क्यों जाएगी?
1: ओहो, डरने की कोई बात नहीं है।
2: मैं कहाँ जाऊंगी?
3: मेरे साथ?
0: नहीं
3: सर, मैं ये कह रहा हूँ।
1: जिडू, फिर वही बात। आओ चलो जिनी, डरने की कोई बात नहीं है। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ बेंजामिन का रिश्ता किस ढंग का है। हाँ, देखो ना, अब इस बात को उसकी माँ के सामने तो पूछा नहीं जा सकता ना।
0: नहीं, वो नहीं जाएगी। जिनी, तुम अंदर जाओ।
1: नहीं, वो मेरे साथ ही जाएगी।
3: सर, मैं कह रहा था कि
1: जिडू, जबरदस्ती पकड़ के ले चलो इसे।
2: नहीं,
1: इट्स माय ऑर्डर।
2: मौसी,
1: चला।
2: नहीं, जिनी,
1: चला।

0: लगता है बाहर से मेरा तन, सुलग रहा अंदर से मेरा मन। हर अश्वेत माओ के घर घर में, धरती के कण कण में, अंबर में उमड़ पड़ा लाशों का एक जुलूस, काले ताबूतों का एक जुलूस, रंग भेद के कुत्सित लिए विचार, मिले श्वेत गिद्धों को नए शिकार। माओ के कोमल अंशों को नोच, खून सनी है इनकी पैनी चोंच, इन सफेद गिद्धों के दल छाए, मन की आग ज्वाला सी बन जाए, फैले चारों ओर आग की ज्वाल, अंगारे बन जाए जयमाल। लगातार 2 सालों से चल रहा है शारीरिक उत्पीड़न, और जारी है स्वीकारोक्ति वसूलने की असफल चेष्टाएं, लेकिन
1: क्या सोच रहे हैं मिस्टर मुलायज?
0: कौन? नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं।
1: जरूर कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं।
0: ये भी क्या आप लोगों का ऑर्डर है? जो कुछ ना कुछ मुझे सोचना ही रहना होगा। नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं मैं। आप लोग जा सकते हैं।
1: किसी के बारे में सोचना क्या आपको अच्छा नहीं लगता मिस्टर मुलायज? मान लीजिए चीनी के बारे में। कितने दिन हो गए चीनी से आपकी मुलाकात नहीं हुई?
0: जिनी?
1: जी हाँ, जिनी, आपकी महबूबा, जिसे लेकर ना जाने कितनी कविताएं आपकी कलम से अब तक निकल चुकी हैं।
0: तो अब आप लोग मेरे व्यक्तिगत जीवन की खोज लेने आए हैं? धन्यवाद
1: मिस्टर मुलायज। आज मैंने ये तय किया है कि आपको कोई जबरदस्त सरप्राइज दूं।
0: सरप्राइज मुझे?
1: हाँ। गार्ड, 4 नंबर सेल का दरवाजा खोल दो।

0: कौन? जिनी? जिनी को यहाँ क्यों लाए हैं? क्यों लाए हैं जिनी को यहाँ?
1: तुम कैसे हो बेंच?
0: जिनी,

0: जिनी, मैं जिंदा हूँ जिनी, तुम कैसी हो? माँ कैसी है? अच्छे हैं ना सब?
1: हाँ, ये लोग मुझे पकड़ कर ले आए हैं।
0: इसे यहाँ क्यों लाए हैं? कहिए क्यों लाए हैं इसे यहाँ?
2: फिलिप सिलेपी का खून किसने किया?
0: नहीं मालूम।
2: आपने नहीं किया, इसका मुझे यकीन है, लेकिन दल में कौन कौन थे ये तो आपको निश्चित रूप से मालूम है, बस उतना ही बता दीजिए।
1: बेंच, मुझे नहीं मालूम ये लोग मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं, मुझे डर लग रहा है।
0: जी,
2: कल कोर्ट में फाइनल हियरिंग है, वहाँ कोर्ट के सामने कहने से भी चलेगा।
1: बेंच, ओ बेंच,
0: जी
1: बचाओ,
0: जी
1: बेंच,
0: जी
1: बेंच, मुझे तुम बचाओ।
0: मिस्टर थॉमसन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिनी क्या कसूर है, उसे यहाँ क्यों लेकर आए, उसे क्यों लेकर आए, बताइए।
2: सिर्फ लेकर ही नहीं आए, अभी तो आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ होने वाला है।
1: हाँ,
2: बता डालिए, फिलिप्स की हत्या के समय वहां कौन कौन थे, कहिए, बोलिए।
0: मिस्टर थॉमसन, मेरे कमजोर पक्ष पर चोट कर आप लोग सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप लोगों की जो मर्जी हो आप कर सकते हैं। मिस्टर थॉमसन, जितना भी सताना हो मुझे सताइए, पर उसे छोड़ दीजिए।
2: सॉरी मिस्टर नोलैंड, आपकी वजह से, सिर्फ आपकी की वजह से
0: मिस्टर थॉमसन,
2: आपकी फूल जैसी जिनी को कीड़ों ने काट खाया।
0: मिस्टर थॉमसन,

0: taking as well all other aspects into account, Benjamin Molloy has been proved guilty in the eye of law.
1: दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया सरकार द्वारा गठित सर्वोच्च अदालत ने अश्वेत तरुण कवि बेंजामिन मोलेयेस को जघन्य नरहत्या, राष्ट्रद्रोहिता एवं सरकार विरोधी षड्यंत्रों में लिप्त रहने के अपराध में प्राण दंड से दंडित किया है।

0: मिस्टर मोलेज, मुझे सख्त अफसोस है।
1: कौन? मिस्टर थॉमसन।
0: इस वक्त बीती बातें याद कर आपको पछतावा नहीं हो रहा मिस्टर मोलेज?
1: नहीं, कोई पछतावा नहीं, वजह भी तो नहीं, बल्कि मुझे गर्व है।
0: अब भी वक्त है मिस्टर मोलेज, अपनी राय बदलकर अगर आप सच्चाई बता दें तो।
1: धन्यवाद।

दंडित कवि की मां ने प्रिटोरिया की बोखा सरकार से पुत्र की प्राण भिक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने उस आवेदन को ठुकरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत कवि बेंजामिन मोरेस को दी गई मौत की सजा को माफ कर देने के लिए विश्व के अनेक राष्ट्र नेताओं ने प्रिटोरिया सरकार से निवेदन किया है।

0: प्रिटोरिया सरकार से निवेदन किया है।
1: वो इंसान नहीं है जिनी, वो इंसान नहीं है। आवेदन निवेदन, किसी का भी कोई मूल्य नहीं है उनके पास, कोई चीज उन्हें नहीं छूती।
2: इतने बड़े झूठ को उन्होंने जबरदस्ती अपनी मनमानी जालसाजियों से सच साबित कर दिया। इस तरह का जुल्म नहीं चल सकता।
1: उनके लिए सच नाम की कोई चीज नहीं है बेटी, ना इंसाफी और झूठ। उनके कानून है, उनके औजार है।
2: ओ बेंच, तुम्हारी कविताएं कब सच होंगी बेंच? कब कब?

मुझे गर्व है अपने ऊपर, मेरा जीवन गौरव मंडित, जितना जीवन मैंने भोगा मुझे गर्व है उस जीवन पर। मातृभूमि के मस्तक पर लो मैंने अपने क्रुद्ध रक्त से तिलक किया है, बंदी गृह की लौह सलाखा मेरे प्राणों को बंधन में रख सकने में कभी नहीं हो सकती सक्षम। निकल पड़ूंगा मुक्ति राह पर, मुझे मिला था मात्र एक जीवन जो मैंने सौंप दिया है स्वतंत्रता को।

18 अक्टूबर 1985 को सारे विश्व के जनमत को ठुकराकर जोहान्सबर्ग के केंद्रीय कारागार में स्वाधीनता संग्राम के सिपाही रंगभेद नीति का विरोध करने वाले कवि बेंजामिन मोलायेस के प्राण दंड के आदेश को क्रियान्वित किया गया।

0: bekledi o. Sen büyük bahar bekledi o.
1: Hami yapsın semisiz mulay. Sırf kuş katma çıkar. Benjamin öp sırf et laş pare.
0: Katma o gaya. Sırf kuş katma o gaya. ठीक है तो फिर उसका निस्तेज ठंडा शरीर ही मुझे दे दो मैं केवल एक बार देखूंगी उसे सिर्फ एक बार देखूंगी
1: सचमुच मैं बहुत दुखी लाश देने का ऑर्डर नहीं
0: ऑर्डर नहीं है साहब मैं उसकी माँ हूँ माँ वो मेरा खून है उसे 28 सालों तक मैंने पाला पोसा है मैं माँ होकर अपने मरे बेटे का मुंह तक नहीं देख सकती साहब
1: Really? We are sorry.
0: बेंजी अपनी कविता की कापियां भी तू लेता जा बेंजी ये सारी कापियां लेता जा ये ले सब ले जा
2: मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का मृत्यु देती प्रेरणा

मृत्युहीन प्राण। अभी आप इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग सुन रहे थे। आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का ये हिंदी अनुवाद था। हिंदी अनुवादक थे दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून विविध भारती पर।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान, और उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं, जो एक और बहुत ही खास शख्सियत को याद करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं। कार्यक्रम का नाम ही उजाले उनकी यादों के है, तो आज का कार्यक्रम है उजाले सदाशिव अमरापुरकर की यादों के।

0: और ये उजाले बांटने के लिए मौजूद हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। बहुत बहुत स्वागत रीमा जी।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: पिताजी की यादों के उजाले बांटने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियोज में, विविध भारती के स्टूडियोज में आते हुए जो पहली फीलिंग है वो क्या है?
1: आकाशवाणी या विविध भारती के स्टूडियोज में मैं जब भी आती हूँ तो थोड़ा मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ, बिकॉज हमारी पूरी फैमिली का आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती, इससे बहुत ही करीबी संबंध रहा है। तो मेरी माँ भी रेडियो आर्टिस्ट थी, अलग अलग ड्रामास, एड फिल्म्स में उन्होंने काम किया था ऑल इंडिया रेडियो के लिए। मैं खुद बचपन में मराठी दो शोज कर चुकी हूँ। जरूरी बात कि 77-78 में मेरे पिताजी बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है जो उन्होंने आकाशवाणी के साथ की है
0: परभणी में।
1: तो वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहां पर वो लगभग 2 महीने टिके, तो ये टिके ही कहना सही होगा, बिकॉज उनकी वो पर्सनालिटी नहीं थी कि वो जॉब करे, क्योंकि शादी हो चुकी थी, 2 बच्चियां थी, तो इसलिए पिताजी को दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैं कमा रहा हूँ, उन्होंने वो जॉब की थी।
0: ये सोच कर कितना मजेदार लगता है कि वो मराठी में बोलते होंगे आकाशवाणी का ये परभणी केंद्र है।
1: या और उनकी आवाज तो वैसे भी उनकी स्ट्रेंथ थी, आज भी है। मतलब आज भी जब भी हम आवाज सुनते हैं तो फैमिली मेंबर्स तो हमारी आंखें भर आती है। उस वक्त तो उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा थी उस आवाज की, तो उनके बहुत सारे फैंस हो गए थे। और फिर ऐसे हुआ कि एक पॉइंट पे मम्मी को ऐसे लगने लगा कि अरे अभी बहुत ही ज्यादा फैंस हो रहे हैं इनके, विशेषतः लड़कियां, तो ये अगर छोड़ रहे हैं जॉब तो ठीक ही बात है।
0: वाह वाह वाह। ये रेडियो में आना उनका कैसे हुआ था, इसकी कोई कहानी हो तो वो?
1: हाँ, तो उसमें बात ऐसी थी कि जैसा मैंने कहा कि पापा बिल्कुल ही पूरी तरह से वो थिएटर, रंगमंच, नाटक, इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। उनके दिमाग में 2400 घंटे वही चलता था। और माँ की और उनकी जो मुलाकात हुई थी वो भी नाटक के दौरान ही हुई थी। मतलब मजे वाली बात यह है कि वो बचपन से, जैसे हम लोग कहते हैं किंडरगार्टन से, वैसे बचपन से वो एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़े। लेकिन कॉलेज में, क्योंकि माँ बहुत होशियार स्कॉलर, उस जमाने में जो कंसेप्ट थी स्कॉलर की, वैसी स्कॉलर थी, तो इसलिए उसने साइंस लिया हुआ था और पापा ने आर्ट्स लिया था। तो कॉलेज में भी वो एक ही कॉलेज में थे। तो जब थिएटर करना शुरू किया तब उन्हें लगा नहीं नहीं नहीं, ये सुनंदा ने करना चाहिए हमारे साथ काम, तो इसलिए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी। और फिर वो थिएटर में मम्मी जो घुस गए तो फिर साइंस वायंस सब पीछे रह गया। थिएटर ही चलता रहा।

0: लकीली पापा के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे अहमदनगर में, जो आज अहिल्यानगर कहा जाता है जिसे। तो उनका ऐसा कुछ नहीं था कि बाबा तू पहले नौकरी कर, पैसे कमा, फिर तेरी शादी करता हूं। उन्हें पता चला कि ये सुनंदा और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इनकी शादी करा देना सबसे अच्छी बात। आई थिंक पापा 23-24 साल के थे और मम्मी 23 साल की थी, उन दोनों में 6 महीने का ही अंतर है उम्र में। तो तब उनकी शादी हुई, 73 में शादी हुई और 74 में मेरी सबसे बड़ी बहन जो है उसका जन्म हुआ। मम्मी उस वक्त LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है वहां पर जॉब करती थी, तो मम्मी ने पापा को ये सहूलियत दे रखी थी कि
1: अपने मन का जियो,
0: हाँ तुम जियो, मैं संभाल लूंगी, मैं कमा रही हूं, अपने बच्चों को हमें कुछ कम नहीं पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, दादाजी और दादी और चाचा जी ये सब लोग थे, तो फैमिली में वैसे पैसे की उनका ये कहना नहीं था कि तुम घर में पैसे दो, पर उनका ये कहना था कि तुम खुद के लिए कुछ कमाओ। तो और मम्मी वो कर रही थी, तो इसलिए दादाजी का भी था कि चलो ठीक है, अभी अगर तुम्हारी बीवी कमा रही है तो तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तो पहली बेटी हुई 74 में, 76 फरवरी में दूसरी बेटी हुई। तब फिर मम्मी को ऐसे लगने लगा, अरे अभी अपनी दो बच्चियां हो गई, अभी भी ये कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो रीजनल न्यूज़पेपर्स में उस समय एड आती थी, हाँ, तो फिर वो मम्मी ने वो एड देखी। और पापा का ऐसा था, वो पूना मुंबई थिएटर के चक्कर में चक्कर काट रहे थे, अहमदनगर पूना मुंबई, इस तरह से उनका चल रहा था। तो उन्होंने मम्मी ने वो एड देखी न्यूज़पेपर में और मम्मी ने बिना पापा को बताए वहां पे अप्लाई कर दिया।
1: वेरी गुड,
0: हाँ। और फिर जब ऑडिशन थी तब मम्मी ने उन्हें बताया SSC ऑडिशन है, आपको जाना है और करके आना है। वो समय ऐसा था कि कमाने वाली माँ थी और घर पे दिखाना बहुत जरूरी था कि भाई मेरी फैमिली बढ़ रही है, मैं भी कमा रहा हूँ इस तरह से। सो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो अब तुम कह रही हो तो मैं जाता हूँ और ऑडिशन देता हूँ। और ऑफकोर्स उनकी आवाज ऐसी थी कि सिलेक्ट होना ही होना था, तो वो सिलेक्ट हो गए और उन्होंने जॉब करी। 2 महीना उन्होंने जॉब करी वहां पर और 1.5 महीने बाद उन्होंने मम्मी को खत लिखा कि मैं अगर ये करता रहा तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा जिंदगी में। तो फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया, पर उन्होंने वो जॉब इस तरह से करी थी, तो आकाशवाणी ने उन्हें काफी हाथ दिया था उस वक्त जब उन्हें वो जरूरत थी पुश की, एक जो साइकोलॉजिकल पुश हमें लगता है मानसिक रूप से कि हमें अभी मुझे कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूं मैं, उस वक्त जो एक अचीवमेंट की फीलिंग है वो आकाशवाणी ने दी हुई है। और मेरे ख्याल से हमें भी, विशेषतः मेरे बारे में मैं कहूंगी कि जब आप ऐसे घर में पैदा होते हो और बड़े होते हो कि जहां पर सुपर

0: अचीवर्स हैं आपके आजू बाजू सारे, तब एक होता है कि मुझ में क्या है, शायद मुझ में कुछ नहीं है, ऐसी एक फीलिंग जो घर का सबसे छोटा सदस्य होता है उसमें आ सकती है, आने की आशंका होती है। तब मुझे आकाशवाणी ने हाथ दिया और मुझे ये समझ में आया उस वक्त कि नहीं, मेरे पास मेरी आवाज है और मैं बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, कंडक्ट कर सकती हूँ। आई थिंक आकाशवाणी हमारे परिवार के लिए वैसा एक जरिया रहा है कि जिन्होंने हमें, जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं था या जब हम एकदम लो, जिसे फेज कहते हैं, वैसे इसमें रहे हैं, उस वक्त हाथ दिया है, जिसे मराठी में हम उभारी कहते हैं, उभारी दी है,
1: उबारा है।
0: हाँ, तो आकाशवाणी से हमारा रिलेशनशिप, हमारी फैमिली का इस तरह से।
1: कितनी सुनहरी यादें आपने शेयर की सदाशिव जी के आकाशवाणी से जुड़ने की। यहाँ सुनंदा जी का जिक्र आता है और नाटकों का भी जिक्र आता है कि जहाँ वो उनके रास्ते एक साथ हुए।
0: राइट,
1: कोई पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ ये एहसास हुआ कि उन्हें अब सुनंदा जी के साथ जीवन बिताना है? वो कोई एक मोमेंट था जहाँ ये हुआ?
0: पापा उनके नाम ही की तरह सदाशिव भोला साम जिसे कहते हैं, वैसी पर्सनालिटी के थे, स्पेशली जब वो कॉलेज में थे तब। तो उनके दिमाग में एक ही पागलपन चढ़ा हुआ था, एक ही भूत सवार था, वो था नाटक, और उन्हें वही करना था। ठीक है, नाटक करते वक्त घंटों तक आप साथ में रिहर्सल्स करते हैं, सब करते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं, तो जो दोस्ती है वो दोस्ती से थोड़ी ज्यादा है, इतना उन्हें शायद समझ में आया होगा। पर उसके ऊपर कुछ करे, उसके ऊपर कुछ एक्ट करे, ये उनकी पर्सनालिटी नहीं थी।
1: पहला कदम उनकी तरफ से नहीं आना था।
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे याद है आज भी, मतलब ये हमारे घर में हमारे बहुत ही आर्ग्यूमेंट का विषय हुआ करता था जब पापा थे तब, कि पहले प्रपोज किसने किया। लेकिन जब अभी मम्मी ने किताब लिखी है उसमें उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि मम्मी ने ही उन्हें एक चिट्ठी लिख के कहा था कि ऐसा ऐसा मेरी फीलिंग्स है और क्या आपको भी यही लगता है, और उन्हें वो चिट्ठी दी थी उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था कि देखो अपने दोस्तों के सामने मत खोलना ये चिट्ठी, घर जाके अकेले में खोलना, बिकॉज पापा ऐसे थे वो हमेशा दोस्तों से घिरे रहते थे, तो वो दोस्तों के सामने खोलेंगे, जोर से पढ़ेंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, इतना डर मम्मी को लग रहा था। तो इस तरह से तो वो पॉइंट था जब मम्मी, क्योंकि मम्मी के घर पे उनके पिताजी की मौत बहुत जल्दी हो चुकी थी जब वो 10-11 साल की थी, तो उस वजह से उनके घर पे वो और उनकी माँ इतने ही थे, उनकी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। तो अभी इसके लिए भी लड़का देखो ये करो, जब वो शुरू हुआ उनके घर पे, जब वो ग्रेजुएशन के आसपास थी, तब उन्होंने कहा अभी ये मेरा ये जो पगला आदमी है उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम में जो है वो प्यार है, उसे ये समझाना अभी जरूरी हो गया है। और फिर उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी, तब फिर उनका आगे जाके इस तरह से हुआ कि फिर मम्मी ने ही थोड़ा थोड़ा, बिकॉज उस वक्त मेरे दादाजी जो थे वो बहुत कर्मठ स्वभाव के थे, तो किसी लड़की का घर पे आना, लड़कियों से दोस्ती, ये सब इम्पॉसिबल था उस समय और अहमदनगर जैसे छोटे से शहर में। पर लकीली मम्मी के पिताजी और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, तो जब मम्मी घर जाने लगी दादी से, फिर पापा की बुआ भी उन्हीं के साथ रहती थी, उनसे इस तरह से जब बातें होना शुरू हुई, तब उन्हें समझ में आया कि कुछ तो मामला है। और फिर उन्होंने वन फाइन डे मम्मी को बुलाया घर पे और कहा कि देखो तुम्हें ये सब दिख रहा होगा कि इतना बड़ा घर है, ये है वो है, पर ये सब मैं धर्मादाय कर दूंगा, बेटों को कुछ नहीं दूंगा मैं। हाँ, तो अगर तुम ये सोचती हो कि इस वजह से है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब मम्मी का इतना क्लियर था कि उसने कहा ठीक है, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं चला लूंगी घर, नो प्रॉब्लम। तो बहुत ही ज्यादा क्लियर इन दोनों के थॉट्स थे। और जैसा मैंने कहा कि पापा को ये शब्दों में पेश करना कि जो हमें हुआ है वो प्यार है, ये पॉसिबल नहीं था, जो मम्मी कर पाई। लेकिन जिस वक्त वो कमिटमेंट हो गई, उस वक्त वो कंप्लीट कमिटमेंट हुई।
1: वाह वाह।
0: तो वो हालांकि वो उन्होंने शब्दों में नहीं कहा होगा, पर वो उनके एंड तक, मतलब ये उन्हें प्यार हुआ जब वो 21 साल के थे, 64 के होने तक वो प्यार बिल्कुल वैसा ही रहा, और ये हम सब लोगों ने देखा हुआ है। और उन दोनों ने वही सीख हमें भी दी है कि अगर कमिटमेंट कर रहे हो तो पूरी तरह से करो, फिर वो अपने काम की तरफ हो या इंसानों की तरफ हो।
1: क्या तो प्यारी बात है। यहाँ एक बहुत क्यूट बात सामने आई है और वो है एक प्रेम कहानी।

जो चिट्ठी के जरिए आगे बढ़ती है, हम जिस समय और समाज में हैं वहां ये यकीन करना अब जरा मुश्किल है कि चिट्ठियों के जरिए भी प्यार का इजहार हो सकता है और वो चिट्ठी बचाकर जीवन भर रखी जा सकती है। मुझे लगता है ये जगह है गाने की, और वो गाना बहुत ही मुफीद है जो चिट्ठी के जरिए प्यार के इजहार की बात करता है। फिल्म है संगम।

यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात जो पीछे छूट गई है उसका सिरा पकड़ के आगे बढ़ते हैं। मम्मी की एक किताब है पिताजी के नाम पर, और आपने कहा कि उसमें ये जिक्र आता है कि उन्होंने सबसे पहले इजहार किया, उस किताब का नाम बता

0: बताइए और वो नाम क्यों रखा गया है इसकी कहानी बताइए।
1: हाँ ओके, तो वो किताब अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है खुलभर दुधाची कहानी। खुलभर माने छोटी सी कटोरी में जितना दूध बैठता है उसको खुलभर कहते हैं, खुल
0: ओके
1: मतलब उतना सा। खुलभर दुधाची कहानी, सो उतने से दूध की ये कहानी है,
0: हाँ,
1: ये
0: सवाल
1: है।
0: आता है कि ये आखिर
1: हाँ
0: क्या है
1: क्या
0: ये।
1: है, राइट। श्रावण महीना जब होता था तो अहमदनगर में या आज भी छोटे गांव में होता होगा, हर मंगलवार को और शुक्रवार को उपवास होता है, पूजा होती है, कथा कथन होता है। तो उस वक्त जो फोक टेल्स जिसे हम कहते हैं, वैसी कथाएं कही जाती थी। तो उस समय सुनी हुई ये कहानी है। ये कहानी है कि एक छोटा सा गांव है, राज्य है, और वहां पर अकाल पड़ा हुआ है, बारिश हुई ही नहीं है, ठीक है, सूखा पड़ा हुआ है। और वहां पर वो राजा हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, और इसलिए वो पंडितों को बुलाता है और कहता है अब मैं क्या करूं। वो पंडित उसे कहते हैं कि जो ये महादेव का मंदिर है आपके गांव में, तो उसका जो गर्भगृह है उसे पूरी तरह से दूध से आप भर दो, तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और फिर आपको बारिश हो जाएगी। तो राजा फरमान निकालते हैं कि हर एक के घर में कल जितना भी दूध होगा, जितना भी जिसके पास होगा, वो सब लाके गर्भगृह में अर्पण कर दे। तो ये सब होता है, तो फिर भी वो गर्भगृह भरता ही नहीं है, इतना दूध आता है, लंबी लंबी लाइनों में लोग आके दूध डालते हैं वहां, फिर भी नहीं होता है। और जो सिपाही होते हैं वो घर घर जाकर आपके पास और दूध है, और दूध है, और दूध है, ऐसा करते हैं। तब वो एक घर में जाते हैं, वहां पे एक बुढ़िया होती है। तो वो कहते हैं आप गए थे दूध डालने? बोले नहीं नहीं मैं अभी जा ही रही हूं। तो उसने एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में दूध लिया हुआ है, और उसने क्या किया है कि उसके घर पे जो उसके बच्चे बच्चियां पोते सब लोग हैं, उनका खाना पीना सब कुछ होने के बाद जितना दूध बचा वो लिया और वो गई और महादेव जी के ऊपर उसने चढ़ा दिया। और जिस क्षण उसने वो चढ़ाया वो गर्भगृह पूरा दूध से भर गया।
0: वाह,
1: तो कहानी का मतलब ये है कि आपके जो कर्तव्य है वो आप पूरा कीजिए, और फिर जो बचा कुचा है वो आप भगवान को दीजिए, भगवान को चलता है। ओके,
0: वाह वाह
1: सो
0: वाह,
1: बेसिकली आप अपनी जो पूरी जिंदगी है वो अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी जो जिम्मेदारियां है उनके प्रति आप अर्पण कीजिए, इस तरह की वो कहानी है। और थोड़ी बहुत मम्मी की जो कहानी है, जीवन की कथा अगर हम सोचे तो वो उसी तरह से गई है। वो भी एक गजब की अदाकारा है, बहुत अच्छा गाती है, लिखती है, बट जब उनकी शादी हुई और उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मेरा सदाशिव है, ये जो मेरा महादेव है, इसे जो करना है, इसमें ज्यादा पोटेंशियल है, इसने ये करना चाहिए, तब उन्होंने अपना खुद का सब पीछे छोड़कर एक बहुत ही कर्मठ घर में जाकर बच्चियों को पाला, और दादा दादी मतलब उनके सास ससुर, बुआ पापा की बुआ थी जो सन्यासिन थी, उनका सब कुछ करते हुए, ये सब कर्तव्य करते करते करते, फिर अल्टीमेटली जब उनकी बेटी की शादी हुई आते एज ऑफ 53, फिर उन्होंने अपना लिखाई का काम और ये सब शुरू किया। और अभी ये है कि पिछले 20 सालों में उनकी लगभग 30 किताबें आ चुकी हैं। तो इसलिए वो हमें लगा कि ये जो कहानी है ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है उस बुक के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी की कहानी उस तरह से रही है। और ऑफ कोर्स भगवान, मतलब उन्होंने पापा को जिस तरह से प्यार दिया, जिस तरह से विश्वास दिया, वैसा ही पापा ने उन्हें रेसिप्रोकेट किया। पापा ने भी, पापा का भी उन पर ऐसा ही विश्वास था, जो अंधविश्वास हम कह सकते हैं थोड़ा सा था, पर वो था। और उस वजह से आई थिंक जो आज भी हमारा घर फूला फला है और इतना अच्छा है वो उस विश्वास की वजह से है।
0: बहुत ही सुंदर घटना है ये, जो किताब के नाम की घटना है और जिस तरह से आपने उसको विस्तार दिया है, ये बहुत ही मार्मिक है। अब चूंकि अमूमन जो रवायती इंटरव्यूज होते हैं वो ये कि बचपन से शुरू करेंगे, लेकिन हम कहीं से शुरू हुए हैं तो वो बचपन की बातें हम आगे कहीं जाके करेंगे,
1: सही
0: क्योंकि
1: बात।
0: बातचीत के अंदर घटनाएं तो आगे निकल कर आएंगी।
1: राइट।
0: चूंकि बातें सुनंदा जी और सदाशिव जी के रिश्ते की चल रही हैं और कैसे उनकी डोर आपस में जुड़ती है चल रही, पहले उन नाटकों का जिक्र करते हैं जो उन्होंने उस दौरान साथ में किए थे, उनसे जुड़ी कुछ कहानियां हो तो वो बताएं।
1: राइट। सो उनसे उनसे जुड़ी तो काफी कहानियां हैं जो हम सुनते सुनते बचपन से आ रहे हैं
0: जी।
1: पर उन्होंने एक जो प्ले उन्होंने किया था वो था बंडू बेबी अणि बुरखा।

0: उस वक्त इंटरकॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स होती थी। ये जो प्ले था इसमें बंडू और बेबी, तो पति पत्नी का कैरेक्टर था ये, इन दोनों ने किया था। और उसी नाटक के दौरान आई थिंक दे रियलाइज्ड कि दे आर इन लव विद ईच अदर। ये एक नाटक के बहुत सारे किस्से हैं, मतलब मम्मी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्कॉलर इसकी थी, तो जब भी उनकी एग्जाम आती थी तो वो अवेलेबल नहीं होती थी प्ले के लिए। प्ले तो करना था, अभी कॉम्पिटिशन है तो जाना तो पड़ेगा। तो उस वक्त मम्मी तो नहीं है, मम्मी ने कहा मैं तो नहीं, मेरी एग्जाम है अभी, मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, आपको जो करना है करो। तो उन्होंने किसी और को वहां पर कास्ट किया और फिर मम्मी ने कहा अगर ये लड़की कास्टिंग है तो आप नहीं करोगे ये रोल। तो इसलिए फिर पापा का रोल भी किसी और ने वहां पर किया।
1: बहुत सही, ठीक है, बहुत ही सही।
0: तो और वो जो था वो उसका शो था संगमनेर नाम के एक छोटे से गांव में, अहमदनगर के पास ही है, वहां पर उसका शो था। और उस समय लाइट चली गई तो माइक नहीं थे, तो फिर आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा, मम्मी हालांकि नाटक में नहीं थी पर क्योंकि वो यूथ फेस्टिवल जैसा माहौल था तो और किसी कॉम्पिटिशन में वो थी, तो इसलिए वो वहां गई हुई थी। तो फिर वहां पर और वो जो नई लड़की और लड़का था उनके आवाज पहुंच ही नहीं रहे थे ऑडियंस तक। तो फिर इन दोनों ने वो डायलॉग्स पीछे से जोर से वो बोले और उन लोगों ने लिपसिंग किए स्टेज के ऊपर।
1: वाह वाह, क्या प्रयोग।
0: इस तरह से वो हुआ। तो ये जो एक किस्सा है ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कभी भी मम्मी ने पापा से ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूँ प्ले के लिए। जो भी डेट चाहिए जब भी चाहिए वो अवेलेबल होती थी।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर। एक पूरा दौर था जब सदाशिव जी लगातार नाटक कर रहे थे और भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि नाटकों के लिए तो अलग अलग शहरों में गांव में जाना होता है। उस दौर के कोई बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं जिन्होंने उन्हें एक मुकम्मल पहचान दी थी, उनकी बात करते हैं।
0: उसमें मैं सबसे पहले पापा कलाकार तो थे, एक्टर तो थे ही, पर वो निर्देशन में भी बहुत रस रखते थे, वो निर्देशक भी थे, राइट। सो अगर उनके नाटकों की बात कही जाए तो उन्होंने कुछ नाटक ऐसे किए थे जैसे छू मंतर करके एक नाटक था, फिर बखरे का राजा जी ये एक प्ले था, छिन्न करके एक नाटक था, कन्यादान एक नाटक था, फिर हैंड्स अप, ये जो पांच छह नाटक है, काही स्वप्ने विकायची ये भी एक था, पर काही स्वप्ने विकायची थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था और कंपटीशन वाला प्ले था, बाकी के ये जो सारे जो मैंने नाम लिए ये कमर्शियल नाटक थे। इसके अलावा भी बहुत सारा काम किया हुआ है पर ये नाटक मैं स्पेशल इसलिए समझती हूँ बिकॉज ये हर एक नाटक ने कुछ इंडस्ट्री को भी दिया हुआ है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका अलग अलग जिक्र मैं चाहता हूँ, जैसे छिन्न का बहुत जिक्र मिलता है, हैंड्स अप का जिक्र मिलता है, काही स्वप्ने विकायची अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसका भी खूब जिक्र मिलता है कि अलग अलग मानदंडों पर इन्होंने कुछ
0: किया है,
1: कामयाबी।
0: तो काही स्वप्ने विकायची ये जो प्ले था ये बहुत पहले कुछ जो प्लेस पापा ने किए थे उसमें से था। तो उसमें वो एक रिटायर्ड टीचर का रोल करते थे जो 83 इयर्स ओल्ड होते हैं और उस वक्त पापा की उम्र थी 23-24 मतलब ज्यादा। उस समय उन्होंने काफी सारे उस पे INT और ये जो सारी कॉम्पिटिशन होती थी उसमें काफी सारे अवार्ड जीते थे उस एक रोल के लिए। उन्हें लोग कास्टिंग के लिए बुलाते थे कि आप आओ हमारे यहाँ पे प्ले में, और वो हर बार जाते थे तो लोगों को लगता था ये कौन आ गया, वो तो एक बुढ़ा आदमी है जो वो रोल कर रहा है, यू नो उम्र में ज्यादा है, आपने कैसे किया, आप तो नहीं हो सकते। ऐसे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उस समय पापा की आंखें चली गई बिकॉज लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये वही इंसान है जिसने 83 साल के एक वृद्ध इंसान का रोल किया हुआ है और वो इतना बखूबी निभाया उन्होंने कि लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि ये एक 24-25 साल का युवक है। तो वो एक प्ले इसलिए बहुत ज्यादा फेमस था क्योंकि पापा की जो एक्टिंग की रेंज थी वो एक प्ले में काफी सारी एक्सपोज हुई थी। इसके अलावा छिन्न जो प्ले है वो विजय तेंदुलकर साहब ने लिखा हुआ था और उसकी खासियत ये है कि वो एक प्ले है जिसमें सबसे पहले और मेरे ख्याल से आखिरी बार वही एक प्ले है जिसमें स्मिता पाटिल जी ने कमर्शियल थिएटर किया था
1: और वो भी पापा के निर्देशन में।
0: तो इसलिए वो एक बहुत ही खास प्ले रहा है और लोगों ने जो सराहा है उस प्ले को क्योंकि उसका विषय है और जो सब था, एक तो तेंदुलकर साहब की जो लिखाई है वो एक तो पाथ ब्रेकिंग ग्राउंड ब्रेकिंग होती है

0: और उसके ऊपर पापा का डायरेक्शन, ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट दोनों चीजें हुई थी। उसी की स्टाइल में दूसरा एक नाटक कहा जाए तो वो है कन्यादान। कन्यादान में डॉक्टर श्रीराम लागू, नीना कुलकर्णी, आशालता वाबगावकर, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे उस समय। और उनके साथ अगेन पापा ने निर्देशित भी किया था, उन्होंने एक्टिंग भी की थी उसमें। छिन्न और कन्यादान, इन्होंने पापा को एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर डायरेक्टर के तौर से एस्टैब्लिश किया, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट थे। और उस समय थिएटर जिस तरह से देखा जाता था, लोग जिस तरह से देखते थे, वैसा मुझे नहीं लगता आज तक वो सुवर्ण काल फिर से आया है।
1: हम उस दौर की बात करें जब टेलीविजन उस तरह से नहीं आया था और महाराष्ट्र में खास तौर पर थिएटर की सशक्त परंपरा थी और कामयाबी के झंडे गाड़ते थे प्लेज और उनकी दास्तानें आज तक कही जाती
0: है। करेक्ट। तो ये प्ले था। उसके बाद पापा ने INT के लिए ही एक प्ले किया था, बखरे का राजा जी। तो बखरे का राजा जी ये जो प्ले था, इसमें नीना कुलकर्णी और दिलीप कुलकर्णी जो उनके हस्बैंड थे, वो भी एक बहुत उम्दा कलाकार थे, उन दोनों को लेकर ये प्ले बनाया गया था। पर उस समय वो प्ले चला नहीं, कमर्शियली इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल और INT को काफी लॉसेस झेलने पड़े थे बिकॉज इट वाज अ हिस्टोरिकल सेट, सब वैसे लगा था और ये सब हुआ था। तो उसके बाद पापा ने डिसाइड किया अब मैं जो करूंगा वो मैं कमर्शियली वायबल करूंगा। पैसे कमाने चाहिए लोगों, मतलब प्रोड्यूसर्स ने, राइट? तो इसलिए उन्होंने दो प्लेज किए उसके बाद डेफिनेटली, जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। एक प्ले तो था छू मंतर, जो उन्होंने डायरेक्ट किया था। और इस प्ले की मजे वाली बात यह है कि उस वक्त लक्ष्मीकांत बेरडे को फर्स्ट टाइम कमर्शियल प्ले में पापा ने कास्ट किया था।
1: ओहो, गजब।
0: इट वाज हिज लॉन्च। तो और वो प्ले बहुत चला बिकॉज इट वाज अ आउट एंड आउट कॉमेडी और बहुत मजा आया लोगों को। और एक लक्ष्मीकांत बेरडे जैसा कलाकार आया, पापा थे, लक्ष्मीकांत बेरडे थे, तो इट वाज पिक्ड अप लाइक हाउ। उसके बाद हैंड्स अप किया था पापा ने, जिसमें वो थे, भक्ति बर्वे थी, ऐसे 5-6 बहुत ही स्ट्रांग आर्टिस्ट उसमें थे। और पापा ने निर्देशित भी किया था वो प्ले और दैट वाज अ हिस्टोरिकल प्ले। मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि बहुत बारी ये बात आई भी है कि जब गोविंद निहलानी जी ने वो प्ले देखा, अगेन विजय तेंदुलकर जी ने उनसे कहा था कि तुम हैंड्स अप का प्ले देखो बिकॉज उस समय निहलानी जी अर्धसत्य का कास्टिंग कर रहे थे और पुलिस इंस्पेक्टर का हीरो है ये तो पता था बिकॉज तेंदुलकर साहब ने ही वो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि तुम ये प्ले देखो, इसमें ये लड़का है, ये बहुत अच्छा इंस्पेक्टर निभाता है, तो तुम देखो। तो इसलिए गोविंद जी गए, उन्होंने वो देखा प्ले और उन्होंने पापा को इंस्पेक्टर के रोल में ही थे वो देखा, लेकिन उन्होंने उनकी कास्टिंग रामा शेट्टी के लिए की।
1: वाह।
0: ओके। और फिर उसके बाद तो इट इज जैसे हम कहते हैं कि हिस्ट्री है। उसके बाद फिर पापा एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कलाकार का नाम उन्हें मिल गया और वो काफी सारी फिल्मों में ही बिजी हो गए। तो थिएटर वो करते रहे पर बहुत थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बाद में वो करते रहे।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए वो हैंड्स अप ये एक जो प्ले है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हैंड्स अप का ये एक मजेदार किस्सा है। उस वक्त क्या होता था, जैसे आपने कहा कि वो समय ऐसा था जब मराठी में नाटक की परंपरा बहुत बहुत स्ट्रांग थी। तो दिन में दो दो तीन तीन शो लगते थे एक प्ले के। तो और उस वक्त जैसे अब है मेट्रो पकड़ लिया चले गए, उबर पकड़ ली चले गए, वैसा नहीं था। आर्टिस्ट को खुद ही जुगाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। पापा के पास उस वक्त एक 2-व्हीलर थी। तो शिवाजी मंदिर में प्ले खत्म हुआ, वहां से उन्हें ठाणा पहुंचना था।
1: ओहो।
0: और ये मैं उस समय की बात कर रही हूं जब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ये सब इतना अच्छा नहीं था बम्बई में।
1: हाँ जी।
0: तो पापा स्कूटर पे जाते थे तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कपड़े नहीं बदले और वो वैसे ही निकल गए और एक भी सिग्नल पर वो नहीं रुके। और हर बार जब उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो बिकॉज वो उस कॉस्ट्यूम में थे उनको लगता था अरे ये तो कोई इंस्पेक्टर है, कुछ अर्जेंट काम होगा, तो सॉरी सॉरी सर करके तो ये कलाकार इस तरह से होते हैं, औलिया जिसे हम कहते हैं कि वो उन्हें सिर्फ वही दिखता है कि मेरा कर्टन और आधे घंटे में खुलने वाला है, मुझे वहां पहुंचना है बस। और
1: क्या प्यारी बात है। वाह। यहां भी गाने की जगह बन रही है और मुझे लगता है कि ये करते हैं कि मम्मी की पसंद का कोई गाना लगाते हैं यहाँ पर।
0: मम्मी की पसंद का ये जो गाना है मेरे महबूब में क्या नहीं।
1: वाह वाह वाह। क्या बात क्या बात क्या बात।

0: बहुत लंबी एक दिलचस्प बात हुई नाटकों को लेकर और तेंदुलकर साहब का नाम वहां बार बार आता है। बहुत करीबी रिश्ता सदाशिव जी का तेंदुलकर जी से रहा है, उससे जुड़ी कुछ घटनाएं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं आपसे सुनना चाहता हूं।
1: ओके तेंदुलकर जी एक हम कह सकते हैं विद्यापीठ थे।
0: बिल्कुल
1: किसी भी घटना की तरफ देखने का उनका जो दृष्टिकोण होता था वो बहुत अलग होता था। रोज की घटनाओं की तरफ भी वो जिस तरह से देखते थे और बात करते थे ये बहुत अलग था। तो उनकी और पापा की जो पहचान थी वो प्ले की वजह से हुई थी, पर सुहास अउचट करके बहुत बड़े आर्टिस्ट है, पेंटर है, उन्होंने उनको मिलाया था। एक ये अहमदनगर से आया हुआ लड़का है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये जब तेंदुलकर साहब को समझ में आया तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया। और सपोर्ट किया मतलब मैं इस तरह से कहती हूँ कि देर वर डेज, ऐसे दिन थे जब दो दो तीन तीन दिन तक पापा उनके घर पर ही रहते थे।
0: गजब।
1: हाँ, और उस वक्त तेंदुलकर साहब जो काम कर रहे थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो वो प्रोसेस का एक भाग होना एक युवा के लिए जो अहमदनगर जैसे छोटे से गांव से आया है ये बहुत बड़ी बात थी। तो पापा हमेशा कहते हैं कि मैं तो उनके सामने जाता था तो जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है जो इंक ब्लॉट करता है, वैसे मैं, मराठी में हम उसे टिप कागद कहते हैं, तो वैसे मैं टिप कागद हो जाता था, जो भी मिले वो एब्जॉर्ब करो।
0: वाह वाह,
1: बस उतना ही। तो ये स्थान तेंदुलकर साहब का पापा की जिंदगी में था। दूसरा, जब 82 में मम्मी को बॉम्बे में ट्रांसफर मिली तब कैसे तैसे करके पापा ने एक किराए का घर लिया था, क्योंकि हम तीनों बच्चियां, मेरी दादी और मम्मी और वो, ऐसे हम सब लोग रहने वाले थे।
0: किस इलाके में?
1: अंधेरी में ही लिया था उन्होंने, बिकॉज उस वक्त बैंड्रा बहुत महंगा था, तो ऐसे उन्होंने

0: मेरी में लिया था। तो एक किराए पे छोटा सा घर लिया था, और 2 साल बाद वो घर मालक ने कहा कि भाई अभी नहीं, अभी आप छोड़ दो, मुझे ये घर बेचना है। तो रातों रात एक हफ्ते के अंदर बंबई जैसे शहर में एक घर ढूंढ पाना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो पापा गए तेंदुलकर साहब के पास, बिकॉज जैसे मैंने कहा ही वॉज अ गाइड, ही वॉज अ फ्रेंड, ही वॉज अ फिलोसोफर। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ है, नो प्रॉब्लम। उन्होंने सीएम साहब के लिए एक लेटर लिखा कि ये ऐसा ऐसा कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार है, और इसे बंबई में रहने के लिए घर नहीं है, तो आप इसकी कुछ मदद कर दीजिए। तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ खत लेकर पापा पहुंच गए। उस समय चव्हाण साहब सीएम थे। उन्होंने वो लेटर देखा और 1 मिनट के अंदर उन्हें लेटर दिया। उस समय ऐसा था कि 2% कोटा हुआ करता था
1: आर्टिस्ट
0: कलाकारों
1: का
0: के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए। तो उसमें से जोगेश्वरी में जो नई एक कॉलोनी बन रही थी वैशाली नगर, वहां पर हमें एक 1 BHK का फ्लैट म्हाड़ा का मिला। तो वो लेटर तेंदुलकर साहब ने दिया और इट वाज अमेजिंग। जैसा पापा हमेशा कहते थे कि आपकी जिंदगी के हर मुकाम पर आपको ऐसे इंसान मिलते हैं जो या तो आपको कुछ नया दिखाते हैं या आपको आगे पुश करते हैं। तो मेरे ख्याल से और पापा से जो बातें होती थी उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि तेंदुलकर साहब ऐसे थे जो पापा के लिए ना ही, मतलब एक नया तरीका दुनिया को देखने का तो था ही जो उन्होंने सिखाया उन्हें, पर उन्होंने उन्हें बहुत बड़ा पुश भी दिया। तो बंबई में घर अपना खुद का लेना हो या उन्हें पहली फिल्म मिलनी हो, पहली फिल्म हालांकि पापा की 22 जून 1897 थी,
1: उसकी बात आगे
0: उसकी
1: करेंगे।
0: आगे करेंगे, पर बड़ी फिल्म जिसमें हालांकि 3.5 सीन थे पर वो पूरी फिल्म पे छा गए थे,
1: बिल्कुल
0: रामा शेट्टी छा गया था कैरेक्टर, तो वो फिल्म हो। तो आई थिंक तेंदुलकर साहब का अनन्य साधारण महत्व हमारी पूरी फैमिली की लाइफ में है।
1: बिल्कुल। एक घटना है जिसमें उन्होंने पूछा था तेंदुलकर से कि आपने अर्धसत्य में मुझे रोल क्यों दिलवाया, उसका जिक्र करें।
0: उसका ये तो एक्चुअली तेंदुलकर साहब ही बेस्ट बता पाएंगे। पर उन्होंने जब पूछा तब मेरे ख्याल से जो मुझे याद है कि तेंदुलकर साहब ने कहा था कि देखो कलाकार कलाकार होता है, क्योंकि उस समय भी और आज भी हमारी इंडस्ट्री में काफी कैंप्स बने हुए हैं, राइट?
1: बिल्कुल
0: सो पूना से आने वाले लोगों का एक कैंप है, बॉम्बे से लोगों का एक कैंप है, अभी तो बॉलीवुड में भी यूपी से आने वाले लोगों का एक कैंप है, इस तरह से। और वो कालातीत है, वो चलता ही रहता है, हर जगह वो होता है। तो उन्होंने कहा था कि कलाकार जो होता है ना, उसकी जात और उसका ये सिर्फ एक होता है धर्म, वो है कला। और तुम जिस तरह से खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो, वैसे मुझे लगता है तुम ये रोल ठीक से कर पाओगे। हालांकि उस वक्त बात ये हुई थी कि पापा को लग रहा था कि हीरो का रोल उन्हें मिलेगा, जो कि ओमपुरी जी को मिला था, क्योंकि इंस्पेक्टर हैंड्स अप में उन्होंने इंस्पेक्टर किया था, का रोल इन्हें ऑफर किया गया था। तो उन्होंने तेंदुलकर साहब से पूछा था, पर मुझे तो लगा था मैं इंस्पेक्टर का रोल करूंगा। तो उन्होंने कहा था तुम बस जो तुम्हें काम दिया है वो ठीक से करो, तुम विलन हो या हीरो हो दैट डज नॉट मैटर, ये फिल्म के आखिर में तुम याद रहने वाले हो लोगों को, ये भूलना मत। तो वो पापा ने सुनी उनकी बात और ही इज वेयर ही रीच्ड।
1: बिल्कुल बिल्कुल। एक कलाकार की ताकत यह है कि कितना छोटा रोल क्यों ना हो, अपनी मौजूदगी, अपनी आमद को कैसे
0: निश्चित
1: साबित किया जा सकता
0: सही
1: है,
0: बात
1: उसकी
0: है।
1: मिसाल है अर्धसत्य। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसे बहुत कम मिसालें मिलती हैं जहां कुछ दृश्यों में अभिनेता ने अपनी वो छाप छोड़ी के इतिहास रच दिया।
0: राइट
1: लेकिन ये उनकी पहली फिल्म नहीं थी,
0: नहीं थी
1: तो
0: नो
1: पहली फिल्म जो नचिकेत और जयू वाली थी वो कैसे मिली, उसका जिक्र कीजिए
0: वो कैसे मिली इसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगी,
1: जी।
0: लेकिन पूना में उस वक्त पापा रहते थे ज्यादा करके और वहां पर वो प्ले वगैरह कर रहे थे। तो उन्होंने कास्टिंग में उन्हें तिलक का रोल दिया गया था और पापा उस वक्त एकदम पतले दुबले पतले से ऐसे थे। तो जयू और नचिकेत पटवर्धन उनके बहुत अच्छे दोस्त थे उस वक्त। तो आप करोगे? उन्होंने कहा हाँ मैं करूंगा, नो प्रॉब्लम, चलो मतलब पापा कहते थे कि अभी दुकान ही खोलकर बैठे हैं तो जो आएगा वो करना तो पड़ेगा, इस तरह से उन्होंने वो किया था। तो लेकिन उन्होंने वो रोल किया

0: वक्त जयू और नचिकेत पटवर्धन ये अभी तो बहुत ही सीनियर और रिस्पेक्टेड ये है, पर वो भी काफी यंग थे उस वक्त। और फिल्म में मुझे याद है पापा ने बाद में जब राज से स्वराज तक में लोकमान्य तिलक का रोल किया, तब उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर मेहनत की थी, क्योंकि उन्हें समझ में आया था कि ये जो फिल्म हमने की है जयू नचिकेत के साथ, इसमें हालांकि मैं तिलक लग रहा हूं फीचर्स के तौर पर, लेकिन जो उसका क्रिटिक आया था वो ऐसा आया था कि मैं मराठी में ये वाक्य कहती हूँ, यजतला लोकमान्य टिळक हा रामोश्या सारखा दिसतो। रामोशी मतलब जो क्लीनर्स होते हैं ना ऑफिसेज में या घर में, उन्हें रामोशी कहा जाता था एक जमाने में, अब तो नहीं कहते कोई, तो इस तरह से वो दिखता है। तो इसलिए उसके बाद जब पापा ने राज से स्वराज तक की, जब उन्हें फिर से एक बार तिलक करने का मौका मिला, लोकमान्य तिलक का किरदार निभाने का मौका मिला, तब पापा ने बाकायदा 6-8 महीने, उस समय ये नहीं होता था, लेकिन जिम जाकर, बिकॉज लोकमान्य तिलक की जो बॉडी थी ही वॉज वेरी वेल बिल्ट, तो इस तरह से दिखने के लिए पापा ने वो सारे एफर्ट्स लेकर वो काम किया हुआ था। ये फिल्म के बारे में जब भी पापा से बात होती थी तो वो कहते थे मैं तो थ्रिल था कि मुझे फिल्म में लिया है। हाँ, बिकॉज उनकी उम्र भी काफी कम थी उस वक्त। और क्या करना चाहिए जब आप कोई इस तरह का किरदार जो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी इंसान का किरदार जब आप निभा रहे हो, तब क्या करना चाहिए इसके लिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीजें उन्हें उस फिल्म से समझ में आई। आज भी जब वो दूरदर्शन पे वो फिल्म लगती है तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच।
1: बिल्कुल, राज से स्वराज का जो जिक्र आया है, मैंने उनके इंटरव्यूज में देखा और पढ़ा है कि बहुत ही प्रिय रहा है ये रोल उनके लिए। और जब भी कभी उनसे ये पूछा गया है कि आपके फेवरेट रोल्स कौन से रहे, तो उन्होंने बड़ी फिल्मों और वो तमाम मशहूर रोल्स को छोड़ के इसका जिक्र किया है, वो क्यों है?
0: क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राज से स्वराज तक में जो लोकमान्य तिलक की भूमिका निभाना है, ये एक उनके लिए एक लर्निंग कर्व रहा है। 22 जून 1897 ये फिल्म में जयू नचिकेत पटवर्धन उन्हें डायरेक्ट किया था लोकमान्य तिलक की भूमिका में, और यहां पर अमाल अलाना जी ने उन्हें डायरेक्ट किया था राज से स्वराज तक में। अमाल अलाना अगेन एक बहुत बड़ा नाम है, अलकाजी सर जिन्होंने एनएसडी जैसी संस्था को रूप लाया, उनकी बेटी अमाल अलाना, उन्होंने ये दिग्दर्शित किया हुआ था। और उस समय ना पापा और 10-15 साल आगे आ चुके थे करियर में एज एन एक्टर ऑल्सो, ही वॉज अ स्टार एट दैट टाइम जब राज से स्वराज तक हुई थी। तो जब उन्हें फिर से चांस मिला तो उन्होंने सोचा कि अब आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ,
1: जो कसर रह गई है,
0: जो कसर रह गई है वो पूरी करनी है, अभी मैं रामोशी नहीं दिखूंगा।
1: Yes.
0: मुझे याद है उन्होंने वो विग से लेके, बिकॉज उनकी कंटिन्यूटी काफी सारी फिल्म्स की होती थी। अब जैसे होता है कि कलाकार एक समय पे एक ही फिल्म करते हैं तो इसलिए वो पूरी तरह से वैसे ड्रेस्ड अप होते हैं, वैसे नहीं हुआ करता था उस वक्त। 2 दिन इस फिल्म का शूटिंग हुआ, फिर 2 दिन उस फिल्म का हुआ, इस तरह से चलता था। तो किसी भी रोल के लिए पूरी तरह से बाल निकालना या ये पॉसिबल नहीं था। पर मुझे याद है कि जब उन्हें ब्रेक था 1 महीने का, तब पापा ने जो कोर्ट सीन्स थे स्पेशली उसके लिए ये निकाले थे, बिकॉज अमाल जी ने उन्हें कहा था कि देखो कोर्ट सीन में जब लाइटिंग होती है तो विग बहुत बुरा दिखता है।
1: हाँ
0: एग्जैक्टली तो इसलिए उन्होंने उस समय बाल निकालकर, और बाकी की फिल्मों में अगर आप देखोगे उस समय में जो शूटिंग हुए थे उसमें पापा ने विग्स पहने हुए हैं।
1: ओके
0: हाँ,
1: क्योंकि कोई रास्ता नहीं था।
0: एग्जैक्टली पर उस समय कलाकार ऐसा नहीं करते थे, वो मैं बताना चाहती हूँ। तो ही वॉज वेरी वेरी इन्वॉल्व्ड इन द स्क्रिप्ट, और उस समय तक पापा का जो रीडिंग था, पापा ही वॉज अ वोरेशियस रीडर, मतलब रोज वो 2-3 घंटा तो पढ़ना तो बनता ही है, किताबें पढ़ना उनका एक जरिया था। तो तब तक उन्होंने जो इतिहास के बारे में पढ़ा था, आई थिंक उसकी वजह से भी उन्हें वो करते वक्त, वो एक्टिंग करते वक्त बहुत मजा आया था, इसीलिए शायद वो उनका फेवरेट ये है कि मैं अभी प्रूव करूंगा। और वैसा लोकमान्य तिलक बाद में, हालांकि बहुत लोगों ने कोशिश की, पर जैसा राज से स्वराज तक में है वैसा लोकमान्य तिलक आज तक हो नहीं पाया है, वैसा लिखा भी नहीं गया है उस तरह से। तो आई थिंक इसलिए वो उनका बहुत फेवरेट कैरेक्टर रहा है।
1: दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज को आज भी लोग खोज खोज कर देखते हैं।
0: हाँ?
1: और दूरदर्शन के आर्काइव्स पर ये अभी भी देखा जा सकता है, खोज कर अगर आप देखें। हाँ? तो वेव्स पर शायद ये अभी भी उपलब्ध है।
0: तो वेव्स पर ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है जो श्याम बाबू ने डायरेक्ट की थी।
1: उस

0: का जिक्र करने से पहले यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कि कौन सा गाना यहाँ आना चाहिए।
1: यहाँ पर तो मुझे ऐसे लगता है कि एक गाना है जो बिल्कुल पापा की जो सोच थी उनके समाज के प्रति, उनके देश के प्रति, वो बहुत ही सुंदर तरीके से जिस गाने में आई है वो था राजी फिल्म का, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू।
0: क्या बात है, गुलजार साहब के बोल।
1: ऑफ कोर्स
0: सुनते हैं ये गाना।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। बातचीत की श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। प्रस्तुत है छाया गीत। हवा के साथ नींद करवटें बदलती है, आंखों आंखों में बात करती है, जर्द पत्तों के बीच ढूंढती है खुशबू वो, फूल तो सूख गए वो कहां समझती है, मन की दहलीज पर रखकर चराग यादों के, खत वो चुपके से अंधेरे में रोज पड़ती है, वो कोई शोक हसीना नहीं है, पर यूं ही कभी कभी उदासियों के बीच हंसती है। ये अभी कौन सा मौसम जगा गया उसको, गुलाबो इत्र की खुशबू से वो महकती है, दर्द से इश्क लड़ाने की उसको आदत है, गम के सहरा में खड़ी तितलियां पकड़ती है।

अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है छाया गीत में। कुछ कहानियां अधूरी सी, चंद मुलाकातें पूरी सी, बड़े हसीन दिन थे वो, खूबसूरत सी थी वो रातें, हाथों में हाथ डाले करते थे हम जब ढेर सारी बातें, चांद का नूर तुम्हारी आंखों में झलकता था, काली घटाएं लहराती थी जुल्फों में, ढलते ढलते शाम कुछ यूं तुमसे लिपट जाती थी, जैसे रात के आगोश में कोई कली सी खिल जाती थी।

एक सुबह हो तुम धुली धुली, एक शाम हो तुम मदहोश सी, एक कतरा हो तुम शबनम का, एक सितारा हो कहकशा के दामन का, एक मुकम्मल हुस्न तुम्हारा परंपरा में सिमटा हुआ सा, कुछ कुछ हया की चांदनी में लिपटा हुआ सा, दिल लुभा रही है तुम्हारी हर एक अदा, इश्क को जैसे दे रही हो सदा, फूलों की खुशबू हो तुम या कोई फूल ही है मेरे रूबरू, चांद की किरण कहूं या चांद हो तुम हूबहू।

0: मला वाटतं की परिवर्तन ही कळायची गरज आहे. आपण पण बदललं पाहिजे आणि आजकाल सांगणाऱ्यांपेक्षा ऐकणारे जास्त महत्वाचे आहेत, तर आपण ऐकून पण घेतलं पाहिजे. त्याचप्रमाणे जगायचं कसं सगळे सांगतात पण वागायचं कसं कोणी सांगत नाही, तर आपण ते आपलं आपण शिकलं पाहिजे वागायचं कसं असं मला वाटतं.
1: हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरून प्रसारित होईल
2: आणि महाराष्ट्रातील सर्व आकाशवाणी केंद्र सहक्षेपित करतील.
1: तेव्हा ऐकायला विसरू नका
2: आकाशवाणी नागपूर निर्मित कार्यक्रम
1: अमृत कलश.
3: आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी. संध्याकाळचे 6 वाजता आता
4: FM बँड 101.7 आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर केंद्र. श्रोते हो, यानंतर ठीक 6 वाजता हिंदीतून बातमीपत्र, 6:05 इंग्रजीतून आणि 6:20 संस्कृतमधून बातमीपत्र दिल्ली केंद्रावरून आम्ही सहक्षेपित करू. त्याचबरोबर 6:10 बातमीपत्र प्रसारित होईल आमच्या केंद्रावरून. श्रोते हो, आज 6:30 आयसीसी महिला T20 विश्वचषक स्पर्धा 2026 अंतर्गत भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये ओल्ड ट्रॅफोर्ड क्रिकेट मैदान मॅजेस्टर येथे खेळल्या जाणाऱ्या T20 सामन्याचं समालोचन आपण ऐकू शकणार आहात दिल्ली केंद्रावरून. या दरम्यान आमच्या न्यूज ऑन AIR ऍपचे कार्यक्रम आपण ऐकणार आहात 6:30 मुंबई केंद्रावरून.
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को लेकर वार्ता आज स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में शुरू हो गई है. ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है. अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं. ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब ईरान ने कहा है कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया गया है. वहीं अमरीकी सेना का कहना है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के 3 पोत INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है.
6: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था. आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है.
5: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये 3 पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया. कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया. इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है.
6: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है. इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध.
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया. राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया.
7: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना. मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे. ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे.
5: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए. तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है और 70 से अधिक

0: श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की गई। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। भारत ने एफआईएच महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। आज ऑकलैंड में फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Talks between the US and Iran aimed at strengthening the fragile interim agreement and advancing efforts to end the West Asia conflict began in Switzerland's Bergenstock today. US Vice President J.D. Vance is leading the US delegation, while Iranian delegation is led by Speaker Mohammad Bagheer Ghalibaf and Foreign Minister Abbas Araghchi. Qatar and Pakistan are mediating the talks. The meeting comes after Tehran closed the Strait of Hormuz again over Israel's continued attacks on Lebanon. However, the U.S. military said that the waterway remains open to all vessels. Tehran and Washington are set to participate in quadrilateral talks later in the day with representatives of Qatar and Pakistan. Ahead of the 4-party talks, the U.S. delegation, which also comprises Special Envoy Steve Witkoff and President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner, held a meeting with the Pakistani mediating team. Prime Minister Narendra Modi today commissioned 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agre in Kolkata. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by the Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said that today India is strengthening its entire maritime ecosystem.
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: Defense Minister Rajnath Singh said that the tri-commissioning of 3 indigenously built Indian Navy platforms is a defining moment in India's maritime capability development. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026 re-examination for admission to undergraduate medical courses was conducted amid tight security arrangements today. It was held across 551 cities in India and 14 cities abroad for more than 22.7 lakh candidates. The examination was conducted from 2 p.m. to 5:15 p.m. in English and 12 Indian languages. In Tamil Nadu, 7 people have been killed and more than 70 workers affected after an ammonia gas leak at a seafood export company in Periyapalayam today. According to preliminary reports, the death toll may rise as rescue and medical operations continue. The National Disaster Response Force, along with specialized chemical, biological and nuclear response teams, launched an immediate rescue operation and worked to contain the leak under strict safety protocols. Chief Minister C. Joseph Vijay ordered a high-level inquiry into the incident and directed a 3-member committee to submit a report within 24 hours. The Chief Minister also announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the families of each deceased. The International Day of Yoga is being observed throughout the globe today. The main event in India was held in Kolkata's Red Road, led by Prime Minister Narendra Modi, who performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi emphasized yoga's role in providing pathway from mental wellness to physical wellness.
2: Yoga केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता. योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है. इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है. यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है.
1: The International Day of Yoga is being observed throughout the globe today. President Draupadi Murmu performed yoga at the Garrison Ground in Jabalpur, Madhya Pradesh. Indian women hockey team has lifted the FIH Women's Nations Cup for the second time, defeating host New Zealand 2-0 in the final in Auckland today. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian team on their win and praised them for the exceptional performance throughout the tournament. In cricket, India A defeated host Sri Lanka by 66 runs in the summit clash of the Tri-Nation A series in Dambulla. Today, put into bat, India posted 377 runs for the loss of 9 wickets in stipulated 50 overs. In reply, Sri Lanka were bowled out for 311 in 47.1 overs. And with that, we end this news bulletin.

आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के

0: झाली सोय.
1: कशाची?
0: बँकेच्या फीची.
1: बघू, 20,000 कर्ज लगेच. कोण देतय, व्याज किती आहे माहितीये? नियमन केलेल्या संस्थांकडूनच कर्ज घ्या. कर्ज तितकं जितकी गरज, तेही तपासून. झाली सोय, पगार ऍडव्हान्स पाठवलाय.
2: आरबीआय म्हणते
1: आर्थिक वागणे योग्य असेल तर ते तुम्हाला वाचवेल.
3: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो.
4: पीएलआई है ना?
5: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं पीएलआई पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी. अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर.

0: सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है, योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं, योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है।
1: श्रोते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणामध्ये योग साधनेचं शारीरिक तसंच मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीनं आणि जागतिक भविष्याच्या दृष्टीने महत्व वाढत असल्याचंही सांगितलं। ते म्हणाले,
0: साथियो, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। इस संतुलन ही योग का आधार है, यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं, बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है, योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें, योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा।
1: श्रोते हो, योगा

0: आणि आता थोड्याच वेळात दिल्लीहून समाचार संध्या न्यूज ऍट 9 स्पॉटलाइट हे कार्यक्रम सहक्षेपित करत आहोत.
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया. कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए. स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न. तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित. पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी. मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया. भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की. और अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है. इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है. पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही. इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं.
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है. इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है.
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है. इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है.
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था. आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है.
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया. कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया. इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है.
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से

0: शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
3: दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: Daily Law के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7,00,000 पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
3: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन

सन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्वकप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सम्पन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अहम है। उन्होंने कोलकाता में मुल्क में ही तैयार किए गए 3 बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारा। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट का दोबारा इम्तिहान आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान मुनक्किद किया गया। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में समुद्री खुराक फराहम करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में मुजाकरात जारी है जिसका मकसद अबूरी मुआहदे को मजबूत बनाना और मगरबी एशिया के तनाजे के खात्मे की कोशिशों को मुस्तहकम करना है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश आसाम सिक्किम और मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खित्ते में हफ्ते तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान न्यूजीलैंड को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर FIH नेशंस कप जीत लिया है। और क्रिकेट में भारत ने फाइनल में मेजबान श्रीलंका को 66 रन से हराकर 3 मुल्कों की ए सीरीज जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जदीद दुनिया में समुद्री ताकत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मजबूत बहरी सलाहियतें किसी भी मुल्क की इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक असर रसूख का फैसला कुन उंसुर होती हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस हकीकत को बखूबी समझता है और इसी के मुताबिक वो अपनी तैयारी कर रहा है। वज़ीर आज़म ने आज कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर मुल्क में ही डिजाइन और तैयार करदा भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाजों को पानी में उतारा। इनमें जदीद स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, अहम सर्वे जहाज INS संशोधक और आबदोज शिकन जंगी सलाहियत से लैस कम गहरे पानी का जहाज INS अग्र शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन जहाजों की तैयारी में 200 से ज्यादा MSMEs ने हिस्सा लिया जिससे मुल्क भर में रोजगार के मौके पैदा हुए और माशी सरगर्मियों को फरोग मिला।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं।
0: अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए अहलियत और दाखिले से मुतालिक कौमी इम्तिहान नीट UG 2026 आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान दोबारा मुनक्किद किया गया। इम्तिहान का इनेकाद करने वाली कौमी एजेंसी NTA ने कहा है कि मुल्क भर के 5,440 इम्तिहानी मराकज और बैरूनी मुल्क के 14 मराकज पर होने वाले दोबारा इम्तिहान में 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। अंग्रेजी और हिंदी समेत 13 जबानों में मजकूरा इम्तिहान का इनेकाद किया गया। NTA ने कहा कि 10,000 से ज्यादा माजूर अफराद समेत तमाम उम्मीदवारों के लिए वसी इंतजाम किए गए थे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इम्तिहान के तमाम मराकज पर आधार पर मबनी बायोमेट्रिक और चेहरे की शिनाख्त, CCTV निगरानी, सिग्नल जैमर्स और रियासती पुलिस की मदद से 2 सतही जांच जैसे सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए। CCTV निगरानी के लिए NTA हेडक्वार्टरों, वजारत तालीम, महकमे आला तालीम के तहत मरकज की मुआवनत से चलने वाले 34 इदारों के साथ साथ तमाम रियासतों और जिला कलेक्ट्रेट में कमान और कंट्रोल सेंटर कायम किए गए थे। इम्तिहान का इनका मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्स, उमूर खारजा की वजारत, महकमे डाक, भारतीय फिजाइया और वजारत दाखिला समेत दीगर इदारों की मदद से किया गया। मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों ने भी तलबा और वालदेन के लिए इंतजाम किए। इनमें इम्तिहान के मराकज पर धूप से बचने के लिए इंतजाम, पीने का पानी, खाना, एम्बुलेंस और जरूरी तिब्बी सहूलियात शामिल थी। आकाशवाणी से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: CBSE ने 12वीं जमात की तस्दीक और दोबारा जांच के नतीजे मरहलावार जारी करना शुरू कर दिए हैं। आज मौसूल होने वाली दरखास्त में से 87% से ज्यादा नतीजे का ऐलान कर दिया। बोर्ड ने कहा कि बाकी नतीजे भी जल्द अज जल्द जारी दिए जाएंगे और तलबा से अपील की है कि ताज़ा मालूमात के लिए सिर्फ CBSE के सरकारी जराये और डिजी लॉकर से ही राब्ता करें। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में आज समुद्री खुराक बरामद करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 कम से कम 7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा वर्कर्स जख्मी हो गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हिलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है क्योंकि इमदादी और तिब्बी कार्रवाइयां जारी हैं।

गए 14 निकाती समझौते की पहली शिक तमाम महाजों पर जंगबंदी का मुतालबा करती है, जिसमें लेबनान भी शामिल है, जहां इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान लड़ाई में हालिया दिनों में शिद्दत आ गई है। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को जयपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया और खाटीपुरा में अहम कोचिंग टर्मिनल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नया टर्मिनल रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाएगा और मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करेगा। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने इस महीने की 27 तारीख को आसाम और मेघालय में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल के हिमालयी इलाकों और सिक्किम में भी इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। आईएमडी ने दिल्ली और दीगर रियासतों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी पेशगोई की है, जबकि मध्य प्रदेश, शुमाली उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ के अलग अलग इलाकों में इस महीने की 25 तारीख तक शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। हॉकी में भारत ने एफआईएच खवातीन के नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर खिताब जीत लिया और खवातीन की प्रो लीग में अपनी जगह यकीनी बना ली। नवनीत कौर और सुनीलिता टोप्पो ने भारत की तरफ से गोल किया। पूरे टूर्नामेंट में भारत नाकाबिले शिकस्त रहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये जीत नौजवान खिलाड़ियों को हॉकी को अपनाने की तरगीब देगी। क्रिकेट में श्रीलंका के दम्बोला में 3 मुल्कों की सीरीज में आज भारत ए ने मेजबान श्रीलंका को 66 रन से शिकस्त दी। भारतीय ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्रा 50 ओवर्स में 9 विकेट पर 377 रन बनाए। भारतीय ने पहली विकेट की शराकतदारी में शानदार 130 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 11 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाई और सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन बनाए। श्रीलंका ए के लिए कोगाथास मेथुलन, रविन्द्र फर्नांडो और वनुजा सहान ने 2-2 विकेट हासिल किए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 47 ओवर्स एक गेंद में 311 रन बनाकर आउट हो गई। दौलत मुश्तरक खेलों के लिए मुंतखब भारतीय मुक्केबाजों ने चेक जमहूरिया के उस्ती नाद लाबेम शहर में मुनदा 56वें ग्रां प्री में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 12 तमगे हासिल किए, जिनमें सोने के 8 तमगे शामिल हैं। 5 रुकनी खवातीन टीम ने सोने के 4 और चांदी का 1 तमगा जीता है। इसमें लवलीना बोरगोहेन, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी और प्रिया घनगास ने सोने का तमगा हासिल किया, जबकि परवीन हुड्डा ने चांदी का तमगा अपने नाम किया। एशियन रिले चैंपियनशिप में चीन के शाओक्सिंग शहर में मुनाकिदा टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन के आखिरी दिन भारत ने खवातीन की 4x100 मीटर दौड़ में सोने का तमगा हासिल किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मजबूत बहरी सलाहियतें मुल्क की इकतसादी और स्ट्रेटेजिक असर रसूख के लिए नहायत अहम हैं। उन्होंने कोलकाता में मुल्क में ही तैयार किए गए 3 बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारा। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट का दोबारा इम्तिहान आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान मुनक्किद किया गया। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में समुद्री खुराक फराहम करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22-7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में मुजाकरात जारी हैं, जिसका मकसद उबूरी माहदे को मजबूत बनाना और मगरबी एशिया के तराजे के खात्मे की कोशिशों को मुस्तहकम करना है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खित्ते में हफ्ते तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान न्यूजीलैंड को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर एफआईएच नेशंस कप जीत लिया है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।

तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर मालिक गलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime capabilities are a deciding factor for countries' economic and strategic influence. He stated that India fully understands this reality and is preparing itself accordingly.
1: 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है।
0: The Prime Minister commissioned 3 indigenously designed and built naval ships, an advanced stealth frigate, INS Dunagiri, a large survey vessel INS Sanshodhak, and an anti-submarine warfare shallow watercraft INS Agre at the Shyama Prasad Mukherjee port in Kolkata today. Mr. Modi noted that more than 200 MSMEs contributed to their construction.